आईया तुद बिन सिद्धि किनै न पाईया कर्म मिलै नाही ठाक रहाईया आखण वाला क्या बेचारा सिफती।

करे आई, आख थके कीमत नहीं पाई। जे सब मिलकर आखण पाहे, वड्डा न होवे घाट न जाए, ना

प्राण सुखाई, हर कीरत हमरी रहरा सुरहाओ। हर जन के वड भाग वडेरे, जिन हर हर सरधा हर प्यास। हर हर नाम मिले तृप्तासह, मिल संगत।

जो सतगुर शरण संगत नहीं आए, त्रिग जीवे त्रिग जीवास, जिन हर जन सतगुर संगत पाई, तिन तुर मस्तक लिखिया लिखास, धन धन सत संगत जित हर रस पाया, मिल जन नानक नाम परगास। राग गुजरी महला पंजवां, काहे रे मन चित वह उद्दम, जा आहर हर जीव परया, सैल पत्थर मह जंत उपाए, ताका रिजक आगे कर धरिया। मेरे माधो जी सत संगत मिले सो तरिया, गुर प्रसाद परम पद पाया।

तिन कवन खिलावै कवन चुगावै मन मह सिमरन करिया सब निदान दस अष्ट सिदान ठाकुर कर तल तरिया जन नानक बल बल सत

सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन हर अगमा अगम अपारा सब त्याव है सब त्याव है तुद जी।

सब दुख विसारन हारा। हरे आपे ठाकुर हरे आपे सेवक जी, क्या नानक जंत विचारा। तू घट घट यंतर सर्व निरंतर जी, हर एको पुरख समाणा। एक दाते एक पेखारी जी, सब तेरे चोज विडाणा। तू आपे दाता आपे भुगता जी, हों तुद बिन अवर

सदा सदा तू एको जी, तू निश्चल करता सोई, तुदे आपे भावै सोई वरतै जी, तू आपे करहै सो होई, तुदे आपे सृष्ट सब उपाई जी, तुदे आपे सिरज सब गोई, जन नानक गुण गावै करते के जी, जो सब सह का जानोई। आसा महला चौथा।

मिल। जिसनो तू जानाहे सोई जन जाने, हर गुण सद ही आख बखाने। जिन हर सेवया तिन सुख पाया,

रह प्यासा, तुम्हें छाड़ कोई अवर ना त्याऊं, जो बर चाहूं सो तुम ते पाऊं, सेवक सिख हमारे तारी है, चुन चुन सत्र हमारे मारी है, आप हाथ दे मुझे उबरी है, मरण काल का त्रास निवरी है, हु जो सदा हमारे पच्छा, श्री अस तुझ जू करे हो रक्षा।

चतुर्दश कंता काल पाए ब्रह्मा बाप तरा काल पाए शिव जू अवतरा काल पाए कर विषण प्रकाशा सकल काल

चाहे हमारा। जवन काल सब जगत बनायो, देव तैत जक्षण उपजायो। आदंतिक कै अवतारा, सोई गुरु समझ हो हमारा। नमस्कार किस ही को हमारी, सकल प्रजा जिन आप सुवारी। शिव कन को सब गुण सुख दियो, सत्रन को पलमू बद कियो। कट कट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत। चीटी ते कुंचर असथूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पछाने, कट कट के पट पट की जाने। जब उद करख करा कर तारा, प्रजा तरत तब देह अपारा। जब आकर्क करत हो कब हूँ, तुम मैं मिलत देह तर सब हूँ। जेते बदन श्रेष्ठ सब तारे, आप अपनी बूझ उचारे। तुम सब ही ते रहत निरालम, जानत बेद भेद अर आलम। निरंका निर्भकार निर्लंब, आद नील अनाद संभ। ताका मूड उचारत भेदा, जाको पेव न पावत बेदा। ताको कृपाहन अनुमानत, महामूड कछ भेद न जानत। महादेव को कहत सदा शिव, निरंकार का चीनत नह पेव। आप अपनी बुद्ध है जेती, बरनत भिन्न भिन्न तुहे तेती। तुमरा लखा न जाए पसारा, केह बिद सजा प्रथम संसारा। एक रूप अनूप स्वरूपा, रंक भयो राव कही पूपा। अंडर जेरज से तज कीनी, उत पुज खान बहुर रच दीनी। कहूं फूल राजा हवे बैठा, कहूं सिमट भयो शंकर कैठा। सिगरी सृष्टि दिखाए अचंभव, आद जुगाद स्वरूप स्वयं भव। अब रक्षा मेरी तुम करो, सिख वार सिख संगरो। दुष्ट जिते उठवत उत्पाता, सकल मलेश करो रणकाता। जे अस तुझ तव सरनी परे, तिनके दुष्ट दुखत हवे मरे। पुरख जवन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारे। जो कल को एक बार त्यै है, ताके काल निकट नह है। रक्षा हुए ताहे सब काला, दुष्ट अरिष्ट टरे तत्काला। कृपा दृष्ट तन जाहे निहर हो, ताके ताप तनक मैं हरे हो। रिद्ध सिद्ध कर मु सब होई, दुष्ट छाह छव सकै न कोई। एक बार जिन तुम्हें संभारा, काल फास्ते ताहे उबारा। जिन नर नाम तिहारू कहा, दारिद दुष्ट दुख ते रहा। खड़ग के तुम्हें शरण तिहारी, आप हाथ दे।

जानी। सुनते पुनीत कहते पवित्र सतगुर रहया भर पूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे।

है जे को पुंचै तिसका हुए उदाहारो एह वस्त तजी नह जाई नित नित रख उर तहारो तम संसार चरण लग तरी है।

मनो ना विसारेन, साध जना कै संग भव जल तारेन, साकत निंदक दुष्ट खिन माहे बिदारेन, तिस साहिब की टेक नानक मनै माहे, जिस सिमरत सुख होए सगले दुख जाहे, तिस साहिब की टेक नानक मनै माहे, जिस सिमरत सुख होए सगले दुख जाहे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की।

0: सुनिहाल सत्रियाकाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।
1: सतनाम वाहिगुरु साहिब जीओ, कृपा करो दीन के दाते, मेरा गुण अवगण ना बिचारो कोई।

वाहिगुरु साहिब जी। एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निर्भउ निर्वैर अकाल मूरत अजुनी सैभं गुर प्रसाद जप आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच दंडौत बंदन अनेक बार सर्व कला समरथ डोलन ते राखो प्रभु नानक दे कर हाथ तू मेरो मेर पर्वत स्वामी ओट गही मैं तेरी ना तुम डोलो ना हम गिरते रख ली।

रख लेनी हर मेरी सतनाम वाहिगुरु साहिब जी दखणे महला पंजवां देखण को मुस्ताक मुख कजेहा तौ धनी फिरदा कितै हाल जा डिठम ता मन त्रापिया देखण को मुस्ताक

वहन वहंदे मैं डिठिया से रहे अमान जिना सतगुर पेटिया पौड़ी जिस जन तेरी भुख है तिस दुख ना व्यापै जिन जन गुरमुख बुझिया सो चौ कुंडी जापै जो नर उसकी सरणी परै तिस कंबह पापै जन्म जन्म की मल उतरै गुर धूड़ी नापै जिन हर भाणा मन्निया

ਨਾਲ ਨਾਤਾ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਾਇਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਨਾਤਾ ਕਾਇਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਦਾ ਧਰਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ, ਮਨ ਨੂੰ ਦਿਆਜ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਿਭਣੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਹਰ ਕਰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਸਾਈਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਮ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ, ਵੀ ਆਹ ਵੀ ਮੈਂ ਵਸਤੂ ਬਣਾ ਲਵਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇਗੀ, ਮੇਰੇ ਕੰਤ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇਗੀ, ਆਹ ਵੀ ਮੈਂ ਦਾਜ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ। ਹਰ ਵਸਤੂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ, ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵੇਦਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਿਛੋੜਾ ਦੀ ਤਾਂਗ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਉਸ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ। ਮੁੱਖ ਕਜੇਹਾ ਤੋ ਧਨੀ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਧਨੀ, ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ, ਮੇਰੇ ਸਵਾਮੀ, ਤੇਰਾ ਮੁੱਖ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਕਲਪਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਗਿਆਸੂ ਭਗਤ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਦਾ ਸਵਰੂਪ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰਾ ਸਵਰੂਪ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਏਗਾ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਨਾ ਕਿ ਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਖੂਬ ਤੇਰੀ ਪਗਰੀ, ਮਿੱਠੇ ਤੇਰੇ ਬੋਲ, ਦੁਆਰਕਾ ਨਗਰੀ ਕਾਹੇ ਕੇ ਮਗੋਲ। ਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਤੇਰਾ ਰੂਪ, ਤੂੰ ਸੁੰਦਰ ਬਾਂਸੁਰੀ ਬਜਾਣ ਵਾਲਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਾਨਾ ਦਾ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾ ਰੂਪ ਉੱਥੇ ਚਿੱਤਰਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨਿਰਗੁਣ ਦੇ ਉਪਾਸਕ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਸਰਗੁਣ ਤੋਂ ਨਿਰਗੁਣ ਦੇ ਉਪਾਸਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹ ਦਿਸਦਾ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਿੱਤੇ ਹਾਲ ਜਾ ਡਿੱਠਮ ਤਾਂ ਮਨ ਤਰਾਪਿਆ, ਹੇ ਮਾਲਕ ਮੇਰਾ ਹਾਲ ਵੇਖ, ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਬੇਹਾਲ ਹੋਵੇ, ਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਹਾਲ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੇਰਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਹਾਲ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਉਰਦੂ ਫਾਰਸੀ ਵਿੱਚੋਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਭੂਤ, ਭਵਿੱਖ ਤੇ ਵਰਤਮਾਨ, ਪਾਸਟ ਫਿਊਚਰ ਤੇ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਵਰਤਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਰਦੂ ਫਾਰਸੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੀਤ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਲੰਘ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਮਾਜ਼ੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਮੁਸਤਕਬਿਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਮੁਸਤਕਬਿਲ, ਬੀਤ ਗਿਆ ਮਾਜ਼ੀ, ਤੇ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹਾਲ। ਹਾਲ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਸਮਾਂ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹਾਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਤੇਰਾ ਹਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਤੇਰਾ ਸਮਾਂ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਤੇਰਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ। ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਇੰਨੇ ਰਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿਸ ਬੋਲੀ ਚੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਅੰਤਰੀਵ ਭਾਵ, ਅਸਲ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਸ ਸਰੀਰ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੇਰਾ ਸਮੇਂ ਜੀਵਨ, ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜਿਉਂ ਰਿਹਾ, ਤੇਰਾ ਇਹ ਸਮਾਂ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਿੱਤਾ ਹਾਲ, ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੇ ਕਿਤੇ ਤੂੰ ਆ ਕੇ ਮੇਰਾ ਹਾਲ ਵੇਖ ਲੈ ਕਿ ਆ ਸਮਾਂ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਰਹਿਣ ਚੰਗੀ, ਨਾ ਦਿਨ ਚੰਗਾ, ਨਾ ਖਾਣਾ, ਨਾ ਪੀਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਬਬੀਹੇ ਵਾਲੀ ਪੁਕਾਰ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸੁਵੰਤੀ ਬੂੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਲਈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਪ੍ਰਿਓ ਪ੍ਰਿਓ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ, ਸੁਵੰਤੀ ਬੂੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਪ੍ਰਿਓ ਪ੍ਰਿਓ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਹਾਲੋਂ ਬੇਹਾਲ ਹੋਇਆ ਹਾਂ, ਫਿਰਦਾ ਕਿਤੇ ਹਾਲ, ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਾ ਡਿੱਠਮ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਤੇਰੇ ਦੀਦਾਰ ਕੀਤੀਆ ਤਾਂ ਮਨ ਤਰਾਪਿਆ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਰੱਜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਰਾਪਿਆ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਟਿਕਾ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਖਲੋਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੋਰ ਇਹਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਪਦਾਰਥ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਪਰ ਇਹ ਕਹੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਪਦਾਰਥ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦੀ, ਉਹਦਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀਓ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਲੋਚਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਲੋਚਾ ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਤਾਈ। ਬਿਲਪ ਕਰੇ ਚਾਤ੍ਰ ਕੀ ਨਿਆਈ, ਤ੍ਰਿਖਾ ਨਾ ਉਤਰੇ ਸ਼ਾਂਤ ਨਾ ਆਵੇ। ਬਿਨ ਦਰਸ਼ਨ ਸੰਤ ਪਿਆਰੇ ਜੀਓ, ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ, ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤ੍ਰਿਖਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤਰਾਪਿਆ ਟਿਕ ਜਾਏਗਾ, ਟਿਕਾ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੀ
सारी संसार की जिहड़ी है शुद्ध बुद्ध गवाच जाती है। तांग इक्को ही है। महला पंजवां, दुखिया दर्द घने वेदन जाने तू धनी। हे धनी, हे वाहिगुरु, मेरे दुखी दर्दमंद दे दर्दा नू तू जानना है। दुखिया किन्ने दुख ने, दर्द घने, घने दा अर्थ है बहुत ज्यादा। वेदन मेरे अंदर दी पीड़, मेरी वेदन हर प्रभ जाने। मेरे मन अंतर की पीड़, मेरे मन अंदर की पीड़ है, मेरे मन अंदर की वेदन है तू जानना है, होर कोई नहीं जान सकता। होर किसी नू लगता है भी कोई होर रोग होएगा, शरीर का रोग होएगा, पर कहिंदे नहीं, इक्को रोग है, तेरे दीदार हो जान। गुरु नानक देव सच्चे पातशाह दतार जी ने इस अवस्था नू हंडाया। सतगुरु दतार पिता महाराज जी जो परमेश्वर के दीदार विच बैराग विच रहे पए सन तलवंडी की धरती ते, ते घर वालिया ने, परिवार वालिया ने वैद बुलाया, वैद बुलाया, वैद की पकड़ टंडोले बाह, भोला वैद ना जानी करक करे जे माए। गुरु साहब कहते वो भोले वैद नू की पता, नवज वेख के ये देखता है भी ये शरीर नू केड़ा रोग है, वात दा रोग है, पित्त दा रोग है, कफ दा रोग है, इनू केड़ा रोग है, ओह जी दवा नबज वेख के तिना रोगों की पछाण हो जाती है। ते वेखना भी इनू केड़ा रोग है, वात दा रोग है, ते ओह जी दवा दे दांगे, पित्त दा रोग है, ते ओह जी कफ दा रोग है, ते ओह जी। पर गुरु साहब कहते भी वह वेखदा भी नबज मट्ठी ते है, ठंडी ते है, पर रोग कोई शरीर का दिसता नहीं, शरीर का कोई रोग नहीं। ये वैद नू की पता लगे, करक करेजे माहे, भी मेरे कलेजे विचो सिक है, वह पीड़ है, वह रोग है। वैदा वैद सुदा स्वैद तू पहला रोग पछाण, सुजान तू, हे वैद ताई तेनू सुजान मन्या जाएगा। वैदा वैद सुजान तू पहला रोग पछाण, पहला रोग पछाण, फिर दारू दा आहर करी, पर उस रोग नू संसार दा वैद नहीं पकड़ सकता, संसार दा डॉक्टर नहीं पकड़ सकता। दुखिया दर्द घने वेदन जाने तू धनी, ये जेड़ा उदा रोग दा देन वाला है ना, उन्हें पता है भी ये रोग क्यों लगा होया। जाना लख पवे पिरी दिखंदो ता दीजीव सा, गुरु साहब कहते जाना लख पवे, कहते मेरे को भावे लखां तरीके हन संसार जगत दे विच खचत होण दे, संसार दे लखां उपा उपा हन कह लई, संसार दे लखां उपचार बंदा कर ले, जाना लख पवे। लोग भी जानते ने भी जे किसी अंदर कोई दर्द, कोई रोग, कोई पीड़ा है, हर बंदा उपचार दस दिंदा है, हर बंदा टोटका दे दिंदा भी आ टोटका अजमा लो, आ टोटका कर लो, आ टोटका कर लो। पर गुरु साहब कहते भी जिन्हां दे अंदर तेनू मिलन दी तांग होवे, परमात्मा लखां टोटके भावे कोई कर ले, उन्हां ते कोई टोटका, कोई उपचार, कोई भी यतन जेड़ा है असर नहीं करदा। उन्हां ते केड़ा यतन असर करदा, पिरी दिखंदो ता जीव सा, कि जे मेनू पिरी दिसे, पति दिसे, वाहिगुरु दिसे, मैं ते तां जाउना हां। जीवात्मा भगत कहिंदा मेरा जीवन ही तां बचदा जे परमात्मा दिसदा है, परमात्मा तो बिना भावे कोई लखां उपचार कर ले, एक भी उपचार सहाई नहीं होना, कारगर नहीं होना। महला पंजवां, टहंदी जाए करार वहन वहंदे मैं डिठिया। हे वाहिगुरु, मैं देखदा हां कि मेरे अंदर ता तेनू मिलन दी तांग है, कि पीड़ा सिल वजी हुई है, पर संसार वेखदा बिना विछोड़े नू जानिया, बिना तेरे मिलाप तो जानिया ही टहंदी जाए करार। ये जीवन दी नदी टहंदी जा रही है, किनारा टहंदा जा रहा है। वहन वहिंदे मैं डिठिया, मैं इन्हां अखां नाल देखिया केती चल गई, किन्ने कु दुनिया चली गई है, सारी दुनिया दर कूच कूचा कर गए, अवरे पी चलन हार, कहते पता नहीं किन्ने कु कूच कर गए, किन्ने कु जा रहे ने। वहन वहंदे मैं डिठिया, मैं वेख्या किन्ने कु वहन वह गए इस जगत संसार अंदर, पता नहीं किन्ने कु वहन वह गए ने। बाबा फरीद जी कहते जिस आसन हम बैठे केते वैस गया, जिथे असी बैठे हाँ एदू पहला पता नहीं किन्ने कु इथे बह के चले गए ने, ते इस तों बाद भी कईयां ने बहना। ये चलाए मान संसार है, सदा ही चलते रहना, कोई किसी थां ते अपने आप नू बन नहीं सकता। कहिंदे संसार दा मतलब ये है कि ये वहिंदा जा रहा पर दिसदा नहीं,
सब तो अचानक हैरानी की गल बदकिस्मती की गल है कि वहन वह रहे ने पर बंदा भी एच वह रहा यह उपचार ही नहीं करता भी मैं भी वह रहा खत्म हो रहा पर प्राप्ति कुछ नहीं। बहती जात कदे दृष्ट न धारत मिथ्या मुह बंद है नित पार्थ माधवे भज नित रहनी जन्म पदार्थ जीत हर सरणी। पंचम पातशाह जी कहते जीवन की नदी वहिंदी जा रही है असि डुबते जा रहे हैं कदी देखिया ही नहीं कदी समझिया ही नहीं कदी यतन ही नहीं किया हल्ला ही नहीं मारिया कि इहदे तो तर जाइए किनारे लग जाइए। जिन टहंदी जाए करार वहन वहंदे मैं डिठिया सही रहे अमान जिन्ना सतगुरु पेटिया। कहिंदे इस वहिंदे दरिया विच सारी दुनिया वह रही है कोई बचदा भी है कोई पार भी लगता है। गुरु साहब कहिंदे सही रहे अमान अमान दा अर्थ है सलामत रहे जेडे बच गए जेडे तर गए जिन्ना सतगुरु भेटिया जिन्ना ने अपने गुरु दे चरण पकड़ ले जेडे अपने गुरु दे मिलाप विच गुरु गोद विच आ गए गुरु हजूरी विच आ गए कहिंदे ओ बच गए उन्होंने अपना जीवन जित लिया जिन्हां नूं गुरु कृपा नाल गुरु दर्शनां दी प्राप्ति हो गई परमेश्वर दे दीदार दी प्राप्ति हो गई वह सलामत रह गए वह बच गए। पौड़ी जिस जन तेरी भुख है तिस दुख ना व्यापै हे वाहिगुरु जिस जन नूं तेरे दर्शनां दी भुख व्यापदी है ना यह ऐसी भुख है इस भुख दे नाल सारियां भुखां मिट जांदियां नाम भुख दे नाल बाकी सारिया भुखा मिट गई तिस दुख ना व्यापै उन कोई दुख नहीं व्यापदा न तन दा न मन दा जिन जन गुरमुख बुझिया सो चौह कुंडी जापै जिस गुरमुख ने गुरु कृपा सदका उस परमात्मा नु बुझ लिया गुरमुख गुरु द्वारा दिते हुए उपदेश नाल वाहिगुरु नु जान लिया सो चौह कुंडी जापै वो चारे कुंडा विच प्रसिद्ध हो जाते चारे दिशावां विचों भगत प्रसिद्ध हो जांदा है उहदे नाम दा डंका चारे पासे वज जांदा है जिहड़ा परमात्मा परमेश्वर नूं पा लैंदा है उह परमात्मा दे प्यार विच मुश्किया जांदा है उहदी खुशबू फिर हर पासे खिलर दी उह चाहे भावे ना चाहे पर उहदी खुशबू उहदे अंदर दी रहमत हर पासे पसरदी है। जो नर उसकी सरणी परै तिस कंबह पापै जेड़ा नर वाहिगुरु दी शरणी आ जांदा है उहदे तो ते पाप भी भज जांदे ने उहदे पाप भी कंबदे ने उहदे नेड़े कोई ऐसा कर्म नहीं आउंदा कोई ऐसा गुनाह नहीं आउंदा कि जेड़ा उहदे नेड़े ढुक सके पाप भी उहदे तो जम भी उहदे तो दूर भज जांदे ने। जन्म जन्म की मल उतरै जन्मां जन्मांतरां दी मैल उतर जांदी है पर किहड़े इशनान नाल किहड़े पाणी नाल गुर धूड़ी नापै जिहड़ा गुरु दी धूड़ी विच इशनान करदा है गुरु उपदेश विच अपना मन लांदा है गुरु साहिब सच्चे पातशाह जी कहिंदे उन्हां दे जीवन दे अंदरों मैल निकल जांदी माघ मज्जन संग साधुआं धूड़ी कर इशनान हर का नाम ध्याए सुन सभना नूं कर दान जन्म कर्म मल उतरै मन ते जाए गुमान सच्चा मार्ग चलदियां उस्तत करै जहान चौंकुंटी जापै उह चारे कुंडां विच उहदी उस्तत हुंदी है। गतार जी कहिंदे जिन हर भाणा मन्निया तिस सोग ना संतापै ना कोई सोग ना कोई संताप कलेश उन्हां दे हिरदे विच रहिंदा जिहड़े भाणे विच आ जांदे ने। हर जियो तू सभना का मित है सब जान है आपै हे वाहिगुरु तू सब दा मित्र है सब दे अंदर दी बेदन नूं अवस्था नूं तू जानदा है ऐसी शोभा जनै की जीवड़ हर प्रताप है हे हरी जिवें दा तेरा प्रताप है तेरे प्रताप करके तेरे जन दा प्रताप भी उड्डा हो जांदा है तेरा जन भी उड्डी शोभा दा मालक हो जांदा है। सब अंतर जन वरताया हर जन ते जापै जो कुछ तेरे पास है हे जा वाहिगुरु तेरा जन जन ते जन जा नीचै हे वाहिगुरु तेरा जन तेरे तो जानिया जांदा है तू अपने जन तो जानिया जाना है तेरे अंदर ते तेरे जन अंदर कोई भेद नहीं रहिंदा वो तेरे प्यार विच तेरे दर्शना विच ऐसा पोत पोत हो जांदा है कि हर हर जन दुई एक है बिब विचार कछ नाहे जल ते उपजित रंग ज्यों जल ही बिखै समाए ये अवस्था दा मालक हो जांदा है। पंचम पातशाह जी ने अज इस पावन पवित्र अठवीं पौड़ी दे अंदर ही रहमत ते कृपालता कीती है
कि वह परमात्मा के प्यारे भगत इको लालसा इको सिख इको इच्छा लैके तुरते ने कि हे मालक तेरे दीदार तेरे दर्शन तेरी रहमत प्राप्त हो जाए तेरे विच अभेद हो जाइए सालाही सालाही एती सुरत ना पाईया नदियां अतै वाह पवै समुद्र ना जानिया समुद्र विच अपने आप नूं उदेल देंदे ने गुरु कृपा करे भुलां चुकां दी खिमा आओ प्यार सहित अमृत बाणी दे कीर्तन नाल जुड़िए भाई साहब भाई ओंकार सिंह जी तिन्हां दा जथा आप जी नूं गुरबाणी कीर्तन नाल जोड़ेगा जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

मना जिन तेरी मन बनत बनाई उठत बैठत साधत सहते आई ति सहते आए जो एक अलख है इहा उहा नानक तेरी रखा है जिह प्रसाद कर है पुन बहुदान मन आठ पहर कर तिसका ध्यान जिह प्रसाद तू आचार ब्योहारी तिस प्रभ कौ सास सास चितारी जिह प्रसाद तेरा सुंदर रूप सो प्रभ सिमर हो सदा अनूप जिह प्रसाद तेरी नीकी जात सो प्रभ सिमर सदा दिन रात जिह प्रसाद तेरी पातर है गुर प्रसाद नानक जासका है जिह प्रसाद सुनै करण नाद जिह प्रसाद पेख है बिस्माद जिह प्रसाद बोले हे अमृत रसना जिह प्रसाद सुख सहजे बसना जिह प्रसाद हस्त कर चल है जिह प्रसाद संपूर्ण फल है जिह प्रसाद परमगत पाव है जिह प्रसाद सुख सह समाव है ऐसा प्रभ त्याग अवरकत लाग हो गुर प्रसाद नानक मन जाग हो जिह प्रसाद तू प्रगट संसार तिस प्रभ को कबू तिस प्रभ को मूल ना मनहो बिसार जिह प्रसाद तेरा प्रताप रे मन मूड तू ताको जाप जिह प्रसाद तेरे कार्य पूरे तिसह जान मन सदा हजूरे जिह प्रसाद तू पाव है साच रे मन मेरे तू तास्यो राच जिह प्रसाद सब की गत होए नानक जाप जपै जप सोए आप जपाए जपै सो नाओ आप गावाए सो हर गुण गाओ प्रभ कृपा ते होए प्रगास प्रभु दया ते कमल बिगास प्रभ सो प्रसन्न बसै मन सोए प्रभ दया ते मत उत्तम होए सर्बिन धान प्रभ तेरी माया आपो कछु न किन्हु लया जित जित लावहो तित लग है हर नाथ नानक इनकै कछु न हाथ सलोक अगम अगाध पार ब्रह्म सोए जो जो कहै सो मुक्ता होए सुनमिता नानक बिनवंता साध जना की अचरज कथा अष्टपदी साध कै संग मुख उज्जल होत साध संग मल सगली खोत साध कै संग मिटे अभिमान साध कै संग प्रगटे सुज्ञान साध कै संग बुझे प्रभ नेरा साध संग सब हुत निबेरा साध कै संग पाए नाम रतन साध कै संग एक ऊपर जतन साध की महिमा बरने कौन प्राणी नानक साध की शोभा प्रभ माहे सम्मानी साध कै संग अगोचर मिले साध कै संग सदा पर फुलै साध कै संग आवह बस पंचा साध संग अमृत रस पुंचा साध संग होए सब की रेन साध कै संग मनोहर बैन साध कै संग नाकत हूं तावै साध संग अस्तित मन पावै साध कै संग माया ते भिन्न साध संग नानक प्रभ सुप्रसन्न साध संग दुश्मन सब मीत साधु कै संग महापुनीत साध संग किस्यो नहीं बैर साध कै संग ना बीगा पैर साध कै संग नाही को मंदा साध संग जाने परमानंदा साध कै संग नाही हो ताप साध कै संग तजै सब आप आपे जाने साध बडाई नानक साध प्रभु बने आई साध कै संग न कबहू तावै साध कै संग सदा सुख पावै साध संग बस्त अगोचर लहै साधु कै संग अजर सहै साध कै संग बसै थान उच्चै साधु कै संग महल पहुँचै साध कै संग दृढ़ सब धर्म साध कै संग केवल पार ब्रह्म साध कै संग पाए नाम निधान नानक साधु कै कुर्बान साध कै संग सब कुल उधारै साध संग साजन मीत कुटुंब ने सुतारै साधु कै संग सो धन पावै जिस धन ते सब को वरसावै साध संग धर्म राय करे सेवा साध कै संग शोभा सुर देवा साधु कै संग पाप पलायन साध संग अमृत गुण गायन साध कै संग सर्वथान गम नानक साध कै संग सफल जनम साध कै संग नहीं कश काल दर्शन भेटत होत निहाल साध कै संग कलुखत हरै साध कै संग नरक पर हरै साध कै संग इहा उहा सोहेला साध संग बिशरत हर मेला जो इच्छा सोई फल पावै साध कै संग न व्यर्था जावै पार ब्रह्म साध रित बसै नानक उदरै साध सुन रसै साध कै संग सुनो हर नाउ साध संग हर की गुण गाऊ साध कै संग न मन ते बिसरै साध संग सरपर निस्तरै साध कै संग लगै प्रभ मीठा साध साधु कै संग घट घट डीठा साध संग भय आज्ञाकारी साध संगत पई हमारी साध कै संग मिटे सब रोग नानक साध भेटे संजोग साध की महिमा वेद न जानना है जेता सुनै तेता बखियाना है
साध की उपमा ते हो गुण ते दूर, साध की उपमा रही भार पूर, साध की शोभा का नाही अंत, साध की शोभा सदा बेअंत, साध की शोभा ऊंच ते ऊंची, साध की शोभा मूच ते मूची, साध की शोभा साध बने आई।

नानक साध प्रभ भेद ना पाई सलोक। मन साचा मुख साचा सोए, अवरना पेखा एकस बिन कोए। नानक ए लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए। अष्टपदी ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप, जैसे जल मह कमल अलेप। ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्दोख, जैसे सूर सर्प कौ शोक। ब्रह्म ज्ञानी कै दृष्ट समान, जैसे राज रंक कौ लागै तुल पवान। ब्रह्म ज्ञानी कै धीरजे एक, ज्यो वसुधा को खोद है को चंदन लेप। ब्रह्म ज्ञानी का यह गुनाव, नानक ज्यो पावक का सह स्वभाव। ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला, जैसे मैल न लागै जला। ब्रह्म ज्ञानी कै मन होए प्रगास, जैसे धर ऊपर आकाश। ब्रह्म ज्ञानी कै मित्र सत्र सुमान, ब्रह्म ज्ञानी कै नाही अभिमान। ब्रह्म ज्ञानी ऊंच ते ऊंचा, मन अपनै है सब ते नीचा। ब्रह्म ज्ञानी से जन पहे, नानक जिन प्रभ आप करे। ब्रह्म ज्ञानी सगल कीरीना आत्म रस, ब्रह्म ज्ञानी चीना। ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर माया, ब्रह्म ज्ञानी ते कछु बुरा ना भया। ब्रह्म ज्ञानी सदा सामदर्शी, ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट अमृत बरसी। ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता, ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल जुगता। ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान, नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान। ब्रह्म ज्ञानी एक ऊपर आस, ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश। ब्रह्म ज्ञानी कै गरीबी समाहा, ब्रह्म ज्ञानी पर उपकार उमाहा। ब्रह्म ज्ञानी कै नाही धंधा, ब्रह्म ज्ञानी ले धावत बंधा। ब्रह्म ज्ञानी कै होए सो भला, ब्रह्म ज्ञानी सो फल फला। ब्रह्म ज्ञानी संग सगल उधार, नानक ब्रह्म ज्ञानी जपै सगल संसार। ब्रह्म ज्ञानी कै एकै रंग, ब्रह्म ज्ञानी कै बसै प्रभ संग। ब्रह्म ज्ञानी कै नाम आधार, ब्रह्म ज्ञानी कै नाम परवार। ब्रह्म ज्ञानी सदा सद जागत, ब्रह्म ज्ञानी अहंग बुद्ध त्यागत। ब्रह्म ज्ञानी कै मान परमानंद, ब्रह्म ज्ञानी कै घर सदा आनंद। ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास, नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश। ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का बेता, ब्रह्म ज्ञानी एक संग हेता। ब्रह्म ज्ञानी कै होए अचिंत, ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत। ब्रह्म ज्ञानी जिस करै प्रभ आप, ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप। ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बड़ भागी पाई है। ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाई है, ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर। नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर। ब्रह्म ज्ञानी की कीमत नाहे, ब्रह्म ज्ञानी कै सकल मन माहे। ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने भेद, ब्रह्म ज्ञानी को सदा आदेश। ब्रह्म ज्ञानी का कथ्या न जाय अधि आख्यर, ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर। ब्रह्म ज्ञानी की मित कौन बखाने, ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने। ब्रह्म ज्ञानी का अंतन पार, नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार। ब्रह्म ज्ञानी सब श्रेष्ठ का कर्ता, ब्रह्म ज्ञानी साध जीव है नहीं मरता। ब्रह्म ज्ञानी मुकत जुगत जी का दाता, ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरख विधाता। ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सब ऊपर हाथ। ब्रह्म ज्ञानी का सगल आकार, ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार। ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी बनी, नानक ब्रह्म ज्ञानी सर्व का धनी सलोक। उर तारै जो अंतर नाम, सर्व मैं पिखै भगवान। निमक निमक ठाकुर नमस्कारै, नानक ओह अपरस सगल निसतारै। अष्टपदी मिथ्या नाही रसना परस, मन मह प्रीत निरंजन दर्स। पर त्रय रूप ना पेख नेत्र, साधकी टहल संत संग हेत। करन ना सुने काहू की निंदा, सब ते जाने आपस को मंदा। गुरु प्रसाद बिख्या पर हरै, मन की बाशना मन ते टरै। इंद्री जित पंच दोख ते रहत, नानक कूट मध्ये को ऐसा अपरस। बैसनो सो जिस ऊपर सो प्रसन्न, विष्णु की माया ते होए भिन्न। कर्म करत होवे नेह कर्म, तिस बैसनो का निर्मल धर्म। काहू फल की इच्छा नहीं बाछै, केवल भागत कीर्तन संग राचै। मन तन अंतर सिमरन गोपाल, सब ऊपर होवत कृपाल। आप दृढ़ अवरह नाम जपावै, नानक ओ बैसनो परम गत पावै। भगवती भगवंत भगत का रंग, सगल त्यागै दुष्ट का संग। मन ते बिनसै सगला भरम, कर पूजै सगल पार ब्रह्म। साध संग पापा मल होवै, तिस भगवती की मत उत्तम होवै। भगवंत की टहल करै नेत नीत, मन तान अर्पै बिसन प्रीत। हर के चरण हृदय बसावै, नानक ऐसा भगवती भगवंत कौ पावै। सो पंडित जो मन प्रबोधै, राम नाम आत्म में सोधै। राम नाम सार रस पीवै, उस पंडित कै उपदेश जग जीवै। हर की कथा हृदय बसावै, सो पंडित फिर जो न आवै।
वेद पुराण सिमरत बूजै मूल सूखम मैं जानै असथूल चौवरना को दे उपदेश नानक उस पंडित को सदा आदेश बीज मंत्र सर्ब को ज्ञान चौवरना मैं जपै को नाम जो जो जपै तिस की गत होए साध संग पावै जान कोय कर कृपा अंतर उर तारै पास प्रेत मुगद पात्र को तारै सर्व रोग का औखद नाम कल्याण रूप मंगल गुण गाम काहु जुगत कितै न पाइय धर्म नानक तिस मिलै जिस लिखिया तुर कर्म जिस कै मन पार ब्रह्म का निवास तिस का नाम सत रामदास आत्म राम तिस नदरी आया दास दसंतन पाए तिन पाया सदा निकट निकट हर जान सुदास दरगह परवान अपने दास को आप कृपा करे तिस दास को सब सो जी परै सगल संग आत्म उदास ऐसी जुगत नानक रामदास प्रभु की आज्ञा आत्म हितावै जीवन मुकत सो कहावै तैसा हरख तैसा उस सोग सदा आनंद तह नहीं बियोग तैसा सुवरन तैसी उस माटी तैसा अमृत तैसी बेखु खाटी तैसा मान तैसा अभिमान तैसा रंक तैसा राजान जो वरताए साई जुगत नानक ओह पुरख कही है जीवन मुकत पार ब्रह्म के सगले ठाओ जेत जेत कर राखै तैसा तिन नाओ आपे करन करावण जोग प्रभ भावै सोई फुन होग पस रेव आप होए आनत तरंग लखी न जाहे पार ब्रह्म के रंग जैसी मत दे तैसा प्रगास पार ब्रह्म करता अभिनाश सदा सदा सदा दयाल सिमर सिमर नानक पहि निहाल सलोक उस्तत करहे अनेक जन अंत न पारा वार नानक रचना प्रभ रची बहुबिद अनेक प्रकार अष्टपति कई कोट होए पुजारी कई कोट आचार व्यवहारी कई कोट भये तीर्थवासी कई कोट बन भ्रम है उदासी कई कोट वेद के स्रोते कई कोट तपीसर होते कई कोट आत्म ध्यान धार है कई कोट कब काब विचार है कई कोट नावतन नाम त्याव है नानक करते का अंत ना पाव है कई कोट भये अभिमानी कई कोट अंध अज्ञानी कई कोट किरपन कठोर कई कोट अभेग आत्म ने कोर कई कोट पर दर्प को ही रहा कई कोट पर दुख न करह कई कोट माया श्रम माहे कई कोट प्रदेश प्रमाहे जित जित लाव हो तित तित लगना नानक करते की जाने करता रचना कई कोट सिद्ध जति जोगी कई कोट राजी रास भोगी कई कोट पंखी सर्प उपाय कई कोट पाथर बिरख निप जाए कई कोट पवन पानी बै संतर कई कोट देश भू मंडल कई कोट ससियर सूर नक्षत्र कई कोट देवदानव इंद्र सिर शत्र सगल समग्री अपने सूत तारै नानक जिस जिस भावै तिस तिस निस तारै कई कोट राजस तामस सातक कई कोट वेद पुराण सिमरत अरसास्त्र कई कोट किए रतन समंद कई कोट नाना प्रकार जंत कई कोट किए चैर जीवे कई कोट गिरिमेर स्वर्ण थीवे कई कोट जख्या किन्नर पिसाच कई कोट भूत प्रेत शुक्र मृगाच सब ते नेराय सब हूं ते दूर नानक आप अलिपत रहया भार पूर कई कोट पाताल के वासी कई कोट नरक सुर्ग निवासी कई कोट जन्म है जीवा है मर है कई कोट बहुजोने फिर है कई कोट बैठत ही खाहे कई कोट कल है थक पाहे कई कोट किए तनवंत कई कोट माया मह चिंत जह जह पाणा तह तह राखे नानक सब किश प्रभ कह हाथे कई कोट भये बैरागी राम नाम संग तिन लेव लागी कई कोट प्रभ को खोजंते आत्म मह पार ब्रह्म लहंते कई कोट दर्शन प्रभ प्यास तिन कौ मिलियो प्रभ अभिनाश कई कोट मांग है सत संग पार ब्रह्म तिन लागा रंग जिन कौ हुए आप सो प्रसन्न नानक ते जान सदा धन तहन कई कोट खाणी अरखंड कई कोट आकाश ब्रह्मांड कई कोट होए अवतार कई जुगत कीनो बिसथार कई बार पसरियो पसार सदा सदा एक एक अंकार कई कोट कीने बहु भांत प्रभ ते होए प्रभ माहे समात
ताका अंत न जाने कोई आपे आप नानक प्रभ सोए कई कोट पार ब्रह्म के दास तिन हो बता तुम प्रकाश कई कोट तात के बेटे सदा निहार है एको नेत्र कई कोट नाम रस पीवा है अमर पय सद सद ही जीवा है कई कोट नाम गुण गाव है आत्म रस सुख सहज समाव है अपने जान को सा सा सुमारे नानक ओए परमेश्वर के प्यारे सलोक करण कारण प्रभ एक है दूसर नाही कोय नानक तिस बलहारण जल थन मही अल सोए अष्टपदी करण करावन करने जोग जो तिस पावै सोई होग खिन मह थापो थाप नहारा अंत नहीं किश पारा वारा हुक्मे तार अतार रहावै हुक्मे उपजे हुक्म समावै हुक्मे ऊच नीच व्यवहार हुक्मे अनेक रंग प्रकार कर कर देखे अपनी वडियाई नानक सब मैं रहया समाई प्रभ पावै मानुख गत पावै प्रभ पावै ता पाथर तरावै प्रभ पावै बिन सास्ते राखै प्रभ पावै ता हर गुण पाखै प्रभ पावै ता पतत उधारै आप करै अपन बिचारै दोहा सिरिया का आप स्वामी खेला बिगसाय अंतर जामी जो पावै सो कार करावै नानक दृष्टि अवर न आवै कहो मनुख ते क्या होए आवै ज्योतिष पावै सोई करावै इसके हाथ होए तन सब किश ले ज्योतिष पावै सोई करे अन जानत बिख्या मैं रचै जे जानत अपन आप बचै परमे भूला दह दिस तावै निमख माहे चार कुंट फिर आवै कर कृपा जिस अपने भगत दे नानक ते जान नाम मिले खिन मह नीच कीट गौराज पार ब्रह्म गरीब निवाज जा का दृष्ट कछु न आवै तिस तत्काल दह दिस प्रगट आवै जा कौ अपनी करै बख्सीस ताका लेखा न गण जगदीश जियो पिंड सब तिस की रास घट घट पूर्ण ब्रह्म प्रकाश अपनी बणत आप बनाई नानक जीवै देख बडाई इसका बल नाही इस हाथ करण करावण सर्ब को नाथ आज्ञाकारी बपुरा जियो ज्योतिष पावै सोई फुन थियो कबहू ऊच नीच मैं बसै कबहू सोग हर रंग हसै कबहू निंद चिंद व्यवहार कबहू ऊब आकाश पयाल कबहू बेता ब्रह्म विचार नानक आप मिलावन हार कबहू निरत करे बहु पांत कबहू सोय रह दिन रात कबहू महाक्रोध विकराल कबहू सर्ब की होतरवाल कबहू होय बहै बड़ राजा कबहू बेखारी नीच का साजा कबहू आप कीरत मह आवै कबहू भला भला कहावै है कबहू आप कीरत मह आवै कबहू भला भला कहावै ज्यो प्रभ राखै तिव ही रहै गुर प्रसाद नानक सच कहै कबहू होय पंडित करे बखियान कबहू मोन धारी लावै ध्यान कबहू तट तीर्थ इसनान कबहू सिद्ध साधक मुख ज्ञान कबहू कीट हस्त पतंग होय जिया अनक जोन भर मैं भ्रमिया नाना रूप ज्यो सुवांगी दिखावै ज्यो प्रभ भावै तिवै नचावै ज्योतिष पावै सोई होए नानक दूजा अवर ना कोय कबहू साध संगत ए पावै उस अस्थान ते बहुर ना आवै अंतर होए ज्ञान प्रगास उस अस्थान का नहीं विनाश मान तान नाम रते एक रंग सदा बस है प्रभ कै पार ब्रह्म कै संग ज्यों जल में जल आए खटाना त्यों ज्योति संग ज्योत समाना मिट गए गवन पाए विश्राम नानक प्रभ कै सदगुरु बान श्लोक सुखी बसै मसकीनिया आप निवार तले बड़े बड़े अहंकारिया नानक गर्भ गले अष्टपदी जिसका अंतर राज अभिमान सो नरक पाती होवत सुआन जो जाने मैं जोवनवंत सो होवत बिष्टा का जंत आपस को कर्मवंत कहावै जन्म मरे बहु जोन परमावै तन भूमिका जो करे गुमान सो मूर्खंदा ज्ञान कर कृपा जिस कह हृदय गरीबी बसावै नानक इहा मुकत आगै सुख पावै धनवंता होए कर गर्भावै तृण समान कश संग न जावै बहु लस्कर मानुक ऊपर करे आस पल पीतरता का होए विनाश सब ते आप जाने बलवंत खिन मह होए जाए पसमंत किसे न बद्दा है आप अहंकारी धर्म राय तिस करे खुआरी गुर प्रसाद जाका मिटे अभिमान सो जन नानक दरगह परवान
कोट कर्म करे हाउ तहारे श्रम पावे सगले बिर थारे अनक तपस्या करे अहंकार नरक सुर्ग फिर अवतार अनक जतन कर आत्म नहीं द्रवय हर दर गहै कहो कैसे गवै आपस कहो जो भला कहावै तिसै भलाई निकट न आवै सर्ब की रेन जाका मन होए कहो नानक ताकि निर्मल सोए जब लग जानै मुझ ते कश होए तब इस कहो सुख नाही कोई जब ए जानै मैं किछ करता तब लग गर्भ जोन मह फिरता जब धाराए को बैरी मीत तब लग नहीं चलना ही चीत जब लग मोह मगन संग माए तब लग धर्म राय दे सजाए प्रभ कृपा ते बंधन टूटै गुर प्रसाद नानक हौ छूटै सहस खटे लख कौ उठ तावै त्रिपत न आवै माया पाछै पावै अनक भोग बिख्या की करै नह त्रिपतावै खप खप मरै बिना संतोख नहीं को राजै सुपन मनोरथ बिरथे सब काजै नाम रंग सर्व सुख होए बडभागी किसै प्राप्त होए करन करावन आपे आप सदा सदा नानक हर जाप करन करावन करने हार इसके हाथ कहा विचार जैसी दृष्ट करे तैसा होए आपे आप आप प्रभ सोए जो के शकीनो सो अपन रंग सब ते दूर सब हूं कै संग बूझै देखै करह बबेक आपे एक आपे अनेक मरह मरै न बिनसै आवै न जाए नानक सद ही रहया समाए आप उपदेशै समझै आप आपे रचिया सबके साथ आप कीनो आपन बिसथार सब कछ उसका उकरने हार उस ते भिन कहो किश होए थान थनंतर एकै सोए अपने चले तो आप करने हार कौतुक करे रंग अपार मन मह आप मन अपने माहे नानक कीमत कह न जाए सत सत सत प्रभ स्वामी गुर प्रसाद किने वख्यानी सच सच सच सब कीना कोट मधे किने बिरलै चीना भला भला भला तेरा रूप अत सुंदर अपार अनूप निर्मल निर्मल निर्मल तेरी बाणी घट घट सुनी श्रवण बख्याणी पवित्र पवित्र पवित्र पुनीत नाम जपै नानक मन प्रीत सलोक संत सरन जो जन परै सो जन उदरण हार संत की निंदा नानका बहुर बहुर अवतार अष्टपदी संत कै दुखन आरजा घटै संत कै दुखन जम ते नहीं छुटै संत कै दुखन सुख सब जाए संत कै दुखन नरक मै पाए संत कै दुखन मत होए मलीन संत कै दुखन सो बाते हीन संत के हते को रखे न कोए संत कै दुखन थान भ्रष्ट होए संत कृपाल कृपा जे करै नानक संत संग निंदक भी तरै संत के दुखन ते मुख पवै संतन कै दुखन काग ज्यो लवै संतन कै दुखन सर्प जोन पाए संत कै दुखन त्रिगत जोन के रमाए संतन कै दुखन तृष्णा मै जलै संत कै दुखन सब को शलै संत कै दुखन तेज सब जाए संत कै दुखन नीच निचाए संत दुखी का थाओ को नाहे नानक संत पावै था ओए पी गत पाहे संत का निंदक महा अतताई संत का निंदक खेन टिकन न पाई संत का निंदक महा हत्यारा संत का निंदक परमेश्वर मारा संत का निंदक राज तेहीन संत का निंदक दुखिया अरदीन संत के निंदक को सर्व रोग संत के निंदक को सदा बिजोग संत की निंदा दुख मह दुख नानक संत पावे ता उसका पी होए मोख संत का दुखी सदा अपवित संत का दुखी किसी का नहीं मित संत के दुखी को डान लागै संत के दुखी को सब त्यागै संत का दुखी महा अहंकारी संत का दुखी सदा बिकारी संत का दुखी जन्मै मरै संत की दुख ना सुख ते टरै संत के दुखी को नाही ठाओ नानक संत पावै तन लय मिलाए संत का दुखी अध बीच ते टूटै संत का दुखी कितै काज ना पहुंचै संत के दुखी कौ ध्यान परमाइयै संत का दुखी उजड़ पाइयै संत का दुखी अंत ते थो था ज्यो सास बिना मृत की लो था संत के दुखी के जड़ किश ना है आपन बीज आपे ही खाहे
संत के दुखी कौ अवर न रख नहार, नानक संत भावै तां लै उबार। संत का दुखी इउं बिल लाए, ज्यों जल बिहुन मछली तड़फड़ाए। संत का दुखी भूखा ने राजै, ज्यों पावक ईधन त्रापै। संत का दुखी छुटे अकेला, ज्यों बुआड़ तिल खेत माहे दोहेला। संत का दुखी धर्म ते रहत, संत का दुखी सद मिथ्या कहत। किरत निंदक का तुर ही पाया, नानक जो तिस भावै सोई थिया। संत का दुखी बिगड़ रूप होए जाए, संत के दुखी को दरगह मिले सजाए। संत का दुखी सदा सहकाई है, संत का दुखी ना मरे ना जीवाई है। संत के दुखी की पूजे ना आशा, संत का दुखी उठ चले निराशा। संत का दुख न त्रष्ट है कोई, जैसा पावे तैसा कोई होए। पया किरत न मिटै कोई, नानक जाने सच्चा सोए। सब घाट तिस क्यों करने हार, सदा सदा तिस को नमस्कार। प्रभु की उस्तत करहु दिन रात, तिस त्या वह सास गिरास। सब काश वरता है तिसका किया, जैसा करे तैसा को थिया। अपना खेल आप करने हार, दूसर कौन कहे विचार। जिसनों कृपा करे तिस आपन नाम दे, बड़भागी नानक जान से सलोक। तज हो सियानप सुरज नहो, सिमरहौ हर हर राय। एक आस हर मन रखाओ, नानक दुख भरम पहु जाए। अष्टपति मानुख की टेक वृथि सब जान, देवन को एक है भगवान। जिसका दिए रहे अगहाय, बहुर न तृष्णा लागै आए। मारे रख है एको आप, मानुख कह किश नाही हाथ। तिसका हुक्म बूझ सुख होए, तिसका नाम रख कंठ परोए। सिमर सिमर सिमर प्रभ सोए, नानक बेगन न लागै कोए। उस्तत मन में कर निरंकार, कर मन मेरे सत व्यवहार। निर्मल रसना अमृत पियो, सदा सुहेला कर लेह जियो। नैनो पेख ठाकुर का रंग, साध संग बिन सह सब संग। चरण चलाओ मार्ग गोबिंद, मिटह पाप जपिए हर बिंद। कर हर कर्म श्रवण हर कथा, हर दरगह नानक उजल मथा। बड़भागी ते जान जग माहे, सदा सदा हर के गुण गाहे। राम नाम जो करह विचार, से तनवंत गनी संसार। मन तन मुख बोल है हर मुखी, सदा सदा जान हो ते सुखी। एको एक एक पछान है, एत उत कियो सो जी जान है। नाम संग जिसका मन मानया, नानक तिन्ह निरंजन जानया। गुर प्रसाद आपन आप सुजै, तिसकी जान ना हो तृष्णा बुझै। साध संग हर हर जस कहत, सर्ब रोग ते ओ हर जन रहत। आन दिन कीर्तन केवल बख्यान, ग्रस्त मैं सोई निर्बान। एक ऊपर जिस जन की आसा, तिस की कटिया जम की फासा। पार ब्रह्म की जिस मन भूख, नानक तिस है न लागै दुख। जिस कौ हर प्रभ मन चित आवै, सो संत सुहेला नहीं डुलावै। जिस प्रभ अपना कृपा करै, सो सेवक कहो किस ते डरै। जैसा सा तैसा दृष्टाया, अपने कार्य में आप समाया। सोदत सोदत सोदत सीजिया, गुर प्रसाद तत सब बूझिया। जब देखो तब सब किश मूल, नानक सो सूखम सोई असथूल। नह किश जन्मे नह किश मरे, आपन चले तो आप ही करे। आवन जावन दृष्ट आन दृष्ट, आज्ञाकारी धारी सब श्रेष्ठ। आपे आप सगल मह आप, अनक जुगत राच थाप उथाप। अबेनासी नाही किश खंड, धारण तार रहे हो ब्रह्मांड। अलख अपेव पुरख प्रताप, आप जपाए त नानक जाप। जेन प्रभ जाता सो सोभावंत, सगल संसार उद्धरै तिन मंत। प्रभ के सेवक सगल उदाहरण, प्रभ के सेवक दुख बिसारण। आपे मेलै कृपाल, गुरु का शब्द जप पय निहाल। उनकी सेवा सोई लागै, जिसनु कृपा करै बड़ भागै। नाम जपत पावै बिसराम, नानक तिन पुरख को उत्तम करमान। जो किश करै सो सो प्रभ कै रंग, जो किश करै सो प्रभ कै रंग। सदा सदा वसै हर संग, सह सुभाए होवै सो होए। करणे हार पछाणै सोए।
प्रभु का किया जन मीठ लगाना जैसा सा तैसा दृष्टाना जिस ते उपजे तिस माहे समाए वे सुख निधान उन्हों बन आए आपस को आप दिनो मान नानक प्रभ जान एको जान सलोक सर्व कला भरपूर प्रभ बिरथा जानन हार जाके सिमरन उधरी है नानक तिस बलहार। अष्टपति टूटी गांडन हार गोपाल सर्ब जिया आपे प्रतपाल सगल की चिंता जिस मन माहे तिस ते बिरथा कोई नाहे रे मन मेरे सदा हर जाप अविनाशी प्रभ आपे आप आपन किया कशु ना होए जे सौ प्राणी लोचै कोए तिस बिन नाही तेरे किश काम गत नानक जाप एक हर नाम रूपवंत होए नाही मोह है प्रभ की ज्योत सगल घट सो है धनवंता होए क्या को गर्भ जा सब किश तिसका दिया दरबै आत सूरा जे को कहावे प्रभ की कला बिना कहता वै जे को होए बहे दा तार तिस दिन हर जाने गवार जिस गुर प्रसाद टूटे हों रोग नानक सो जान सदा आरोग ज्यो मंदर को थामे थमन त्यों गुर का शब्द मन है अस थमन ज्यो पाखाण नाव चढ़ तरै प्राणी गुर चरण लागत ने सुतरै ज्यो अंधकार दीपक प्रकाश गुर दर्शन देख मन होए बिगास ज्यो महा उद्यान में मार्ग पावे त्यों साधु संग मेल ज्योत प्रगटावे तेन संतन की बादशाह तूर नानक की हर लोचा पूर मन मूरख काहे बिल लाइये प्रभ लिखे का लिखिया पाइये दुख सुख प्रभ देवन हार अवर त्याग तू तिसै जतार जो काश कर सोई सुख मान भूला काहे फिरह अजान कौन बस्त आई तेरा संग लपट रहे उ रस लोभी पतंग राम नाम जप हिरदय माहे नानक पात सेती घर जाहे जिस वक्र को लैन तू आया राम नाम संतन कर पाया ताज अभिमान लेहो मन मोल राम नाम हिरदय मह तोल लाद के प्रसंत संग चाल अवर त्याग बिख्या जंजाल तन तन कह सब कोए मुख उजल हर दरगह सोए एहो वापार विरला वापार है नानक तक सद बलहार है चरण साध के तोए तोए पियो अर्प साध को अपना जियो साध की तूर करो इशनान साध ऊपर जाइए कुर्बान साध सेवा वड भागी पाईए साध संग हर कीर्तन गाईए अनक बिघन ते साधु रखे हर गुण गाए अमृत रस चख है कोट गही संत है दर आया सर्ब सुख नानक तेहे पाया मृत को जी वालन हार भूखे को देवत आधार सर्व निधान जाकी दृष्टि माहे पूर्व लिखे का लहना पाहे सब किश तिस काओ करने जोग तिस बिन दूसर हुआ ना होग जाप जान सदा सदा दिन रहनी सब ते ऊच निर्मल एह करनी कर कृपा जिस काओ नाम दिया नानक सो जान निर्मल थिया जा कै मन गुर की प्रतीत तिस जन आवै हर प्रभ चीत भगत भगत सुनिए तह लोए जाके हृदय एको होए सच करनी सच ताकी रहत सच हृदय सतमुख कहत सची दृष्ट सचा आकार सच वरत सचा पासार पार ब्रह्म जिन सच कर जाता नानक सो जन सच समाता श्लोक रूप न रेख न रंग केशो त्रह गुण ते प्रभ भिन्न तिसे बुझाए नानका जिस होवै सो प्रसन्न। अष्टपदी अविनाशी प्रभ मन मह राख मानुख की तू प्रीत त्याग तिस ते परय नाही किश कोए सर्ब निरंतर एको सोए आपे बिना आपे दाना गहर गंभीर गहीर सुजाना पार ब्रह्म परमेश्वर गोविंद कृपा निदान दयाल बख्शंद साध तेरे की चरणी पाओ नानक कह मन एहो अनराओ मनसा पूर्ण सरना जोग जो कर पाया सोई होग हरन भरन जाका नेत्र फोर तिसका मंत्र न जाने होर आनंद रूप मंगल सद जाकै सर्ब थोक सुनिए घर ताकै
राज मैं राज जोग मह जोगी तप मैं तपीसर गृहस्थ मैं भोगी त्याय त्याय भगत है सुख पाया नानक तिस पुरख का किने अंत न पाया जा की लीला की मेत नाहे सगल देव हारे अवगाहे पिता का जन्म के जाने पूत सगल परोई आपु नै सूत सुमत ज्ञान ध्यान जिन दे जन दास नाम त्या वैसे तेहो गुण मैं जाको परमाए जन्म मरे फिर आवे जाए ऊंच नीच तिसके अस्थान जैसा जन आवे तैसा नानक जान नाना रूप नाना जाके रंग नाना पेक करह एक रंग नाना बिद कीनो बिस्तार प्रभ अविनाशी कुंकार नाना चलित करे खिन माहे पूर रहे पूरन सब ठाए नाना बिद कर बंत बनाई अपनी कीमत आपे पाई सब घट तिसके सब तिसके ठाओ जप जप जीवै नानक हर नाओ नाम के धारे सगले जंत नाम के धारे खंड ब्रह्मंड नाम के धारे सिमरत वेद पुराण नाम के धारे सुनन ज्ञान तिहान नाम के धारे आकाश पाताल नाम के धारे सगल आकार नाम के धारे पुरिया सब पवन नाम कै संग उदरे सुन श्रवन कर कृपा जिसे आप नए नाम लाए नानक चौथे पाद मै सो जान गत पाए रूप सत जाका सत अस्थान पुरख सत केवल प्रधान करतूत सत सत जाकी बाणी सत पुरख सब माहे समाणी सत कर्म जाकी रचना सत मूल सत सत उत्पत सत करणी निर्मल निर्मली जिसे बुझाए तिस है सब पली सत नाम प्रभ का सुखदाई विश्वास सत नानक गुरते पाई सत बचन साधु उपदेश सत ते जान जाके हृदय प्रवेश सत निरत बूझै जे कोई नाम जपत ताकि गत होए आप सत किया सब सत आपे जाने अपनी मेत गत जिस की श्रेष्ठ सो करने हार अवर न बूझ करत बिचार करते की मेत न जाने किया नानक नानक जो तिस भाव है सो वर्तिया बिस्मन बिस्म पय बिस्माद जिन बूझिया तिस आया स्वाद प्रभ कै रंग राच जन रहे गुरु कै बचन पदार्थ लहे ओए दाते दुख काटन हार जाकै संग तरह संसार जन का सेवक सुवड भागी जन कै संग एक लिव लागी गुण गोबिंद कीर्तन जन गावै गुर प्रसाद नानक फल पावै श्लोक आद सच जुगाद सच है पे सच नानक होसी पे सच अष्टपदी चरण सत सत परसनहार पूजा सत सत सेव दर दर्शन सत सत पेखनहार नाम सत सत ध्यावनहार आप सत सत सब धारी आपे गुणकारी शब्द सत सत प्रभ भक्ता सुरत सत सत जस सुनता बुजन हार को सत सब होए नानक सत सत प्रभ सोए सत सुरूप हृदय जिन मान्या करण करावन तिन मूल पछान्या जाकर हृदय विश्वास प्रभ आया तत ज्ञान तिस मन प्रगटाया भै ते निरपौ होए बसाना जिसते उपजिया तिस माहे समाना बस्त माहे ले बस्त गडाई ताको पिन ना कहना जाई बूझे बूजन हार बबेक नारायण मिले नानक एक ठाकुर का सेवक आज्ञाकारी ठाकुर का सेवक सदा पुजारी ठाकुर के सेवक कै मन प्रतीत ठाकुर के सेवक की निर्मल रीत ठाकुर का सेवक जन संग प्रभ का सेवक नाम कै रंग सेवको प्रपालन हारा सेवक की राखे निरंकार सो सेवक जिस दया प्रभ तारै नानक सो सेवक सा सा सुमारै अपने जन का पर्दा टाकै अपने सेवक की सर पर रखै अपने दास कौ दे वडाई अपने सेवक कौ नाम जपाई अपने सेवक की आप पात रखै ताकि गत में तो कोई ना लाखै प्रभ के सेवक कौ को ना पहुँचै प्रभ के सेवक ऊच ते ऊचे जो प्रभ अपनी सेवा लाया नानक सो सेवक दै दिस प्रगटाया
निकी गिरी में कल रख है भस्म करै लश्कर कूट लख है जिसका सास न काटत आप ताको रखत देकर हाथ मानस जतन करत बहु भांत तिसके करत व्यर्थे जात मारे न रख है अवर न कोई सर्ब जिया का राखा सोए काहे सोच करे रे प्राणी जप नानक प्रभ अलख विडाणी बारंबार बार प्रभ जपिए पी अमृत एह मन तन तृपिए नाम रतन जिन गुरमुख पाया तिस किश अवर नाही दृष्ट आया नाम धन नामो रूप रंग नामो सुख हर नाम का संग नाम रस जो जन त्रिपताने मन तन नामे नाम समाने उठत बैठत सोवत नाम कहो नानक जन कै सद काम बोलो जस जि बा दिन रात प्रभ अपने जन कीनी दात करह भगत आत्म कह जाए प्रभ अपने सिमरह समाए जो हुआ होवत सो जान प्रभ अपने का हुक्म पछान तिसकी महिमा कौन बखाना हो तिसका गुण कह एक न जाना हो आठ पहर प्रभ बस हे हजूरे कहो नानक से जन पूरे मन मेरे तिन की ओट ले हे मन तन अपना तिन जन दे हे जिन जान अपना प्रभु पछाता सो जान सर्ब थोक का दाता तिसकी शरण सर्व सुख पावा है तिसके दर्श पाव मिटा हुआ है अवर स्यान पसगली शाड तिस जन की तू सेवा लाग आवन जाना होवी तेरा नानक तिस जान के पूजा हो सद पैरा सलोक सत पुरख जिन जाने सतगुर तिसका नाओ तिसकै संग सिख उदरै नानक हर गुण गाओ अष्टपदी सतगुर सिख की करै प्रतपाल सेवक कौ गुर सदा दयाल सिख की गुर दुरमत मल हिरै गुर बचनी हर नाम उचरै सतगुर सिख के बंधन कटै गुर का सिख बेकार ते हटै सतगुर सिख कौ नाम धन दे गुर का सिख वडभागी हे सतगुर सिख का हलत पलत सवार नानक सतगुर सिख कौ जी नाल समार है गुर कै ग्रह सेवक जो रहै गुर की आज्ञा मन में साह है आपस कौ कार कश ना जिनावै हर हर नाम हृदय सद त्यावै मन बेचै सतगुर कै पास तिस सेवक के कारज रास सेवा करत हुए नेह कामी तिस कौ होत प्राप्त स्वामी अपनी कृपा जिस आप करे नानक सो सेवक गुर की मत ले बीस बिसवे गुर का मन माना है सो सेवक परमेश्वर की गत जाना है सो सात गुर जिस हृदय हर नाओ अनक बार गुर को बल जाओ सर्व निधान जी का दाता आठ पहर पार ब्रह्म रंग राता ब्रह्म मैं जान जन मैं पार ब्रह्म एक है आप नहीं काश परम सह स्यान पलै न जाइए नानक ऐसा गुर बड़भागी पाइए सफल दर्शन पेखत पुनीत परसत चरण गत निर्मल रीत पेटत संग राम गुण रवे पार ब्रह्म की दुर्गह गवे सुनकर बचन करण आगाने मन संतोख आत्म पति आने पूरा गुर अख्याओ जाका मंत्र अमृत दृष्ट पेख हो संत गुण बेअंत कीमत नहीं पाए नानक जिस पावे तिस लय मिलाए जिहबा एक उस्तत अनेक सत पुरख पूर्ण बबेक काहू बोल न पहुचत प्राणी अगम गोचर प्रभ निरबानी निराहार निर्वैर सुखदाई ताकि कीमत किने न पाई अनक भगत बंधन नित कर है चरण कमल हिरदय सिमर है सदबलहारी सतगुरु अपने नानक जिस प्रसाद ऐसा प्रभ जपने एहो हर रस पावै जन कोए अमृत पीवै अमर सो होए उस पुरख का नाही कदे विनाश जा कै मन प्रगटे गुणतास आठ पहर हर का नाम ले सच उपदेश सेवक कौ दे मोह माया के संग ना लेप मन में राख हर हर एक अंधकार दीपक प्रकाशे नानक भरम मोह दुख तहते नासे तपत माहे ठाठ वरताई आनंद भया दुख नाठे पाई जन्म मरण के मिटे अंधे से साधु के पूर्ण उपदेशे पाओ चुका निरपाओ होए बसे सगल ब्याद मन ते खै नसे
जिसका सातिन कृपा तहारी साध संग जप नाम मुरारी थे तपाई चूके ब्रह्म गवन सुन नानक हर हर जस श्रवन निर्गुण आप सरगुण पियोही कला तार जिन सगली मोही अपने चरित प्रभ आप बनाए अपनी कीमत आपे पाए हर बिन दूजा नाही कोय सर्ब निरंतर एको सोए ओत बोत रव्या रूप रंग पै प्रगा साध कह संग रच रचना अपनी कल तहरी अनक बार नानक बलहारी श्लोक साथ न चले बिन भजन बिखिया सगली शार हर हर नाम कमावना नानक एहो तन सार अष्टपदी संत जना मेल करो विचार एक सिमर नाम आधार अवर उपाव सब मीत विसार रहो चरण कमल हृदय में उरतहार रहो करण कारण सो प्रभ सम्रथ दृढ़ कर गहु नाम हर वत एतन संचो होवो भगवंत संत जना का निर्मल मंत एक आस राखो मन माहे सर्ब रोग नानक मिट जाहे जिस तन को चार कूट उठता वह सो तन हर सेवा ते पाव है जिस सुख को नित बच्छ है मीत सो सुख साधु संग परीत जिस सोभा को करह पली करनी सा सोभा भज हर की सरनी अनको उपावी रोग न जाए रोग मिटे हर अवखत लाए सर्ब निधान मह हर नाम निधान जप नानक दरगह प्रवान मन प्रबोध हो हर कह नाए दै दिस दावत आवै ठाए ता कौ बिघन न लगे कोए जाकै हृदय बसए हर सोए कल ताती ठंडा हर नाओ सिमर सिमर सदा सुख पाओ पाओ बिन सह पूर्ण होए आस भगत पाए आत्म प्रगास तित घर जाए बसै अविनाशी कहो नानक काटी जम फासी तत विचार कहे जन साचा जन्म मरै सो काचो काचा आवागवन मिटे प्रभ सेव आप त्याग सरण गुरुदेव इयो रत्न जन्म का होए उधार हर हर सिमर प्राण आधार अनको पावना छूटन हारे सिमरत सास्त वेद बिचारे हर की भगत करो मन लाए मन बंशत नानक फल पाए संग न चालस तेरे तना तू क्या लपटा वह है मूर्ख मना सोत मीत कुटंब अर बनता इन ते कहो तुम कवन सुनाथा राज रंग माया बिस्थार इन ते कहो कवन छुटकार अस हस्ती रथ असवारी झूठा डंप झूठ पासारी जिन दिए तिस बुझे ना बिगना ना बिसार नानक पशुताना गुर की मत तू ले आने भगत बिना बहु डूबे सियाने हर की भगत करो मन मीत निर्मल होए तुम्हारो चीत चरण कमल राखो मन माहे जन्म जन्म के किल बिख जाहे आप जपहो अवरा नाम जपा वाहो सुनत कहत रहत गत पावहो सार भूत सत हर को नाओ सह सुभाए नानक गुण गाओ गुण गावत तेरी उतर सुमैल बिन सजाए हो मैं बिख फैल होहे अचिंत बसै सुख नाल सास ग्रास हर नाम संभाल शाड़ सियानप सगली मना साध संग पावह सच तना हर पूंजी सच करहो ब्योहार ईहा सुख दरगह जयकार सर्ब निरंतर एको देखो कहो नानक जाकै मस्तक लेख एको जप एको सलाहे एक सिमर एको मन आहे एक सके गुण गाओ अनंत मन तन जाप एक भगवंत एको एको एक हर आप पूरन पूर रहे ओ प्रभ व्याप अनक विस्तार एक ते पहे एक आराध पराशत गए मान तन अंतर एक प्रभ राता गुरु प्रसाद नानक एक जाता श्लोक फिरत फिरत प्रभ आया परया तो सरनाए नानक की प्रभ बेनती अपनी भगती लाए अष्टपदी जाचक जान जाचै प्रभ दान कर कृपा देवहो हर नाम साध जना की मांगो धूर पार ब्रह्म मेरी सरदा पूर सदा सदा प्रभ के गुण गावहो सास सास प्रभ तुम्हें त्यावहो चरण कमल स्यों लागे प्रीत भगत करो प्रभ की नित नीत एक ओट एको आधार नानक मांगे नाम प्रभ सार प्रभ की दृष्ट महा सुख होए हर रास पावे बिरला कोए
जिन चाखिया से जान त्रिपता ने पूर्ण पुरख नहीं डोलाने सो भर भरे प्रेम रस रंग उपजे चाऊ साध कै संग परे सरन आन सब त्याग अंतर प्रगासो आन दिन लिग लाग बटभागी जपया प्रभ सोए नानक नाम रते सुख होए। सेवक की मनसा पूरी पही सतगुर ते निर्मल मत लई जन कौ प्रभ होयो दयाल सेवक कीनो सदा निहाल बंधन काट मुकत जन पाया जन्म मरण दुख भ्रम गया। ऐछ पुनी श्रद्धा सब पूरी रव रहया सतसंग हजूरी जिसका सातन लिया मिलाए नानक भगती नाम समाए। सो क्यों बिसरै जे काल ना पानै सो क्यों बिसरै जे किया जानै सो क्यों बिसरै जिन सब किश दिया सो क्यों बिसरै जे जीवन जिया सो क्यों बिसरै जे अगन में राखै गुर प्रसाद को बिरला लाखै। सो क्यों बिसरै जे बिखते काढ़ै जन्म जन्म का टूटा गांडै गुर पूरै तत इह बुझाया प्रभ अपना नानक जन तिहाया। साजन संत करहो ए काम आन त्याग जपहो हर नाम सिमर सिमर सिमर सुख पाव हो आप जप हो अवरह नाम जपाव हो। भगत पाए तरिय संसार बिन भक्ति तन हो सी शार सर्व कल्याण सुख निध नाम बूढ़त जात पाए विश्राम। सगल दुखा होवत नास नानक नाम जप हो गुणतास उपजी प्रीत प्रेम रस चाओ मन तन अंतर ही सुआओ। नेत्रहो पेख दर्श सुख होए मन बिगसै साध चरण तो होए। भगत जना कै मन तन रंग बिरला को पावे संग एक वस्त दीजे कर्म मया गुर प्रसाद नाम जप लया ताकि उपमा कही न जाए नानक रहया सर्व समाए। प्रभ क्षंद दीन दयाल भगत वशल सदा कृपाल अनाथ नाथ गोबिंद गोपाल सर्व कटा करत प्रतपाल आद पुरुख कारण करतार भगत जना के प्राण आधार। जो जो जपै सो होए पुनीत भगत पाए लावै मन हीत हम निर्गुण यार नीच अजान नानक तुमरी सरन पुरख भगवान। सर्ब बैकुंठ मुकत मोख पाए एक एक निमक हर के गुण गाए अनक राज भोग बड़े आई हर के नाम की कथा मन पाई। बहु भोजन का प्रसंगीत रसना जपती हर हर नीत भली सो करनी सो बातनवंत हृदय बसे पूर्ण गुरमंत साध संग प्रभ देहु निवास सर्व सुख नानक प्रगास। सलोक सरगुण निर्गुण निरंकार सुन समाधि आप आपन किया नानका आपे ही फिर जाप। अष्टपदी जब अकार एक आशना दृष्टेता पाप पुन तब कहते होता जब तारी आपन सुन समाद तब पैर विरोध किस संग कमात जब इसका वर्ण चिन्ह न जापत तब हर सोग कह किसे व्यापत जब आपन आप पार ब्रह्म तब मोह कहां किस होवत भरम आपन खेल आप वरतीजा नानक करने हार न दूजा। जब होवत प्रभ केवल तनी तब बंद मुक्त कहो किस कहो गनी जब एक कह हर आगम अपार तब नरक सुरक कहो कौन अवतार जब निर्गुण प्रभ सह सुबाए तब शिव साकत कहो के तठाए जब आपे ही आप अपनी ज्योत तरै जब आपे ही आप अपनी ज्योत तर तब कवन निडर कवन कत डरै आपन चले तो आप करने हार नानक ठाकुर अगम अपार। अविनाशी सुख आपन आसन तह जन्म मरण कहो कहा विनाशन जब पूर्ण करता प्रभ सोए तब जम की त्रास कह हो किस होए जब अवगत अगोचर प्रभ एका तब चित्र गुप्त किस पूछत लेखा जब नाथ निरंजन अगोचर अगाधे तब कौन छुटे कौन बंधन बाधे अपन आप ही अचरजा नानक आपन रूप आप ही उपरजा। जह निर्मल पुरख पुरख पत होता तह बिन मैल कहो क्या तोता जह निरंजन निरंकार निर्वाण तह कौन कौमान कौन अभिमान जह स्वरूप केवल जगदीश तह शाल शिद्र लगत कहो कीस जह ज्योत स्वरूपी ज्योत संग समावै तह किस है भूख कवन तृप्तावै
ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਕਰਨੇ ਹਾਰ ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕਾ ਨਾਹੀਂ ਸੁਮਾਰ ਜਬ ਆਪਣੀ ਸੋਭਾ ਆਪਣ ਸੰਗ ਬਨਾਈ ਤਬ ਕਵਨ ਮਾਏ ਬਾਪ ਮਿੱਤਰ ਸੋਤ ਪਾਈ ਜਹ ਸਰਬ ਕਲਾ ਆਪੇ ਪ੍ਰਬੀਨ ਤੈ ਵੇਦ ਕਤਿਵ ਕਹ ਕੋ ਚੀਨ ਜਬ ਆਪਣ ਆਪ ਆਪ ਉਰ ਧਾਰੈ ਤਉ ਸਗਨ ਅਪ ਸਗਨ ਕਹਾ ਬੀਚਾਰੈ ਜਹ ਆਪਨ ਊਚ ਆਪਣ ਆਪ ਨੇਰਾ ਤਹ ਕੌਣ ਠਾਕੁਰ ਕੌਣ ਕਹੀਐ ਚੇਰਾ ਬਿਸਮਨ ਬਿਸਮ ਰਹੇ ਬਿਸਮਾਦ ਨਾਨਕ ਆਪਣੇ ਗਤ ਜਾਣਹੁ ਆਪ ਜਹ ਅਸ਼ਲ ਅਸ਼ੇਦ ਅਭੇਦ ਸਮਾਇਆ ਉਹਾਂ ਕਿਸੈ ਵਿਆਪਤ ਮਾਇਆ ਆਪਸ ਕੋ ਆਪੇ ਆਦੇਸ ਤਿਹ ਗੁਣ ਕਾ ਨਾਹੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਜਹ ਏਕ ਏਕ ਏਕ ਭਗਵੰਤਾ ਤਹ ਕੌਣ ਅਚਿੰਤ ਕਿਸ ਲਾਗੈ ਚਿੰਤਾ ਜਹ ਆਪਣ ਆਪ ਆਪ ਪਤੀਆਰਾ ਤਹ ਕੌਣ ਕਥੈ ਕੌਣ ਸੁਣੈ ਹਾਰਾ ਬਹੁ ਬੇਅੰਤ ਊਚ ਤੇ ਊਚਾ ਨਾਨਕ ਆਪਸ ਕੋ ਆਪੇ ਪਾਹੁਚਾ ਜਹ ਆਪ ਰਚਿਉ ਪ੍ਰਪੰਚ ਆਕਾਰ ਤਿਹੁ ਗੁਣ ਮੈਂ ਕੀਨੋ ਬਿਸਥਾਰ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਤੈ ਪਈ ਕਹਾਵਤ ਕੋ ਨਰਕ ਕੋ ਸੁਰਗ ਬੰਸ਼ਾਵਤ ਆਲ ਜਾਲ ਮਾਇਆ ਜੰਜਾਲ ਹਮੈ ਮੋਹ ਪਰਮ ਪਹਿ ਪਾਰ ਦੁਖ ਸੁਖ ਮਾਨ ਅਪਮਾਨ ਅਨਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੀਓ ਬਖਿਆਨ ਆਪਨ ਖੇਲ ਆਪ ਕਰ ਦੇਖੈ ਖੇਲ ਸੰਕੋਚੈ ਤਾਉ ਨਾਨਕ ਏਕੈ ਜਹ ਅਭਗਤ ਭਗਤ ਤਹ ਆਪ ਜਹ ਪਸਰੈ ਪਸਾਰ ਸੰਤ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੋਹੂ ਪਾਕ ਕਾ ਆਪੇ ਧਨੀ ਉਨਕੀ ਸੋਭਾ ਉਨਹੂ ਬਨੀ ਆਪੇ ਕੌਤੁਕ ਕਰੇ ਆਨੰਦ ਜੋਜ ਆਪੇ ਰਸ ਭੋਗਨ ਨਿਰਜੋਗ ਜਿਸ ਭਾਵੈ ਤਿਸ ਆਪਨ ਨਾਏ ਲਾਵੈ ਜਿਸ ਭਾਵੈ ਤਿਸ ਖੇਲ ਖਿਲਾਵੈ ਬੇਸੁਮਾਰ ਅਥਾ ਅਗੰਤ ਅਤੁਲੈ ਜਿਉ ਬੁਲਾਵਹੁ ਤਿਉ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਬੋਲੈ ਸਲੋਕ ਜੀ ਜੰਤ ਕੇ ਠਾਕੁਰਾ ਆਪੇ ਵਰਤਣ ਹਾਰ ਨਾਨਕ ਏਕੋ ਪਸਰਿਆ ਦੂਜਾ ਕਹਿ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਰ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਆਪ ਕਥੈ ਆਪ ਸੁਣਨੈ ਹਾਰ ਆਪੇ ਏਕੋ ਆਪ ਬਿਸਤਾਰ ਜਾ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਤਾਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਉਪਾਏ ਆਪਣੇ ਭਾਣੇ ਲੈ ਸਮਾਏ ਤੁਮ ਤੇ ਭਿੰਨ ਨਹੀਂ ਕਿਛ ਹੋਏ ਆਪਨ ਸੂਤ ਸਭ ਜਗਤ ਪਰੋਏ ਜਾ ਕਉ ਪ੍ਰਭ ਜੀਉ ਆਪ ਬੁਝਾਏ ਸੱਚ ਨਾਮ ਸੋਈ ਜਨ ਪਾਏ ਸੋ ਸਮਦਰਸੀ ਤਤ ਕਾ ਬੇਤਾ ਨਾਨਕ ਸਗਲ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਾ ਜੇਤਾ ਜੀ ਜੰਤਰ ਸਭ ਤਾਕੈ ਹਾਥ ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਅਨਾਥ ਕੋ ਨਾਥ ਜਿਸ ਰਾਖੈ ਤਿਸ ਕੋਇ ਨ ਮਾਰੈ ਸੋ ਮੂਆ ਜਿਸ ਮਨਹੋਂ ਬੇਸਾਰੈ ਤਿਸ ਤਾਜ ਅਵਰ ਕਹਾਂ ਕੋ ਜਾਏ ਸਭ ਸਿਰ ਏਕ ਨਿਰੰਜਨ ਰਾਏ ਜੀ ਕੀ ਜੁਗਤ ਜਾਕੈ ਸਭ ਹਾਥ ਅੰਤਰ ਬਾਹਰ ਜਾਨਹੋਂ ਸਾਥ ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ ਬੇਅੰਤ ਅਪਾਰ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਦਾ ਬਲਿਹਾਰ ਪੂਰਨ ਪੂਰ ਰਹੇ ਦਇਆਲ ਸਭ ਉਪਰ ਹੋਵਤ ਕਿਰਪਾਲ ਆਪਣੇ ਕਰ ਤਬ ਜਾਣੈ ਆਪ ਅੰਤਰ ਜਮੇ ਰਹਿਓ ਵਿਆਪ ਪ੍ਰਤਪਾਲੈ ਜੀਅਨ ਬਹੁ ਭਾਂਤ ਜੋ ਜੋ ਰਚੇ ਸੋ ਤਿਸੈ ਧਿਆਤ ਜਿਸ ਭਾਵੈ ਤਿਸ ਲਏ ਮਿਲਾਏ ਭਗਤ ਕਰਹਿ ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਏ ਮਨ ਅੰਤਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਮਾਨਿਆ ਕਰਨਹਾਰ ਨਾਨਕ ਏਕ ਜਾਣਿਆ ਜਨ ਲਾਗਾ ਹਰ ਏਕ ਨਾਏ ਤਿਸ ਕੀ ਆਸ ਨ ਬਿਰਤੀ ਜਾਏ ਸੇਵਾ ਕੋ ਸੇਵਾ ਬਨਿਆਈ ਹੁਕਮ ਬੂਝ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਈ ਇਸ ਤੇ ਉਪਰ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰ ਜਾ ਕੈ ਮਨ ਬਸਿਆ ਨਿਰੰਕਾਰ ਬੰਧਨ ਤੋਰ ਭਏ ਨਿਰਵੈਰ ਆਨ ਦਿਨ ਪੂਜੈ ਗੁਰ ਕੇ ਪੈਰ ਇਹ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ ਨਾਨਕ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਮੇਲੇ ਸਾਧ ਸੰਗ ਮਿਲ ਕਰਹੋ ਆਨੰਦ ਗੁਣ ਗਾਵਹੋ ਪ੍ਰਭ ਪਰਮਾਨੰਦ ਰਾਮ ਨਾਮ ਤਤ ਕਰਹੋ ਵਿਚਾਰ ਦੁਰਲਭ ਦੇ ਕਾ ਕਰਹੋ ਉਦਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਓ ਪ੍ਰਾਣ ਤਰਨ ਕਾ ਇਹੈ ਸੁਆਓ ਆਠ ਪਹਿਰ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਖੋ ਨੇਰਾ ਮਿਟਾਇਆ ਗਿਆਨ ਬਿਨਸੇ ਅੰਧੇਰਾ ਸੁਨ ਉਪਦੇਸੋ ਹਿਰਦੈ ਬਸਾਵਹੋ ਮਨ ਇੱਛੇ ਨਾਨਕ ਫਲ ਪਾਵਹੋ ਹਲਤ ਪਲਤ ਦੋਏ ਲਿਹੋ ਸਵਾਰ ਰਾਮ ਨਾਮ ਅੰਤਰ ਉਰ ਤਾਰ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕੀ ਪੂਰੀ ਦੀਖਿਆ ਜਿਸ ਮਨ ਬਸੈ ਤਿਸ ਸਾਚ ਪਰੀਖਿਆ ਮਾਨ ਤਾਨ ਨਾਮ ਜਪਹੋ ਲਿਗਲਾਏ ਦੁਖ ਦਰਦ ਮਨ ਤੇ ਪਉ ਜਾਏ ਸੱਚ ਵਾਪਾਰ ਕਰਹੋ ਵਾਪਾਰੀ ਦਰਗਾਹ ਨਿਭੈ ਖੇਪ ਤੁਮਾਰੀ ਏਕਾ ਟੇਕ ਰਖੋ ਮਨ ਮਾਹੇ ਨਾਨਕ ਬਹੁਰ ਨਾ ਆਵੈ ਜਾਹੇ ਤਿਸ ਤੇ ਦੂਰ ਕਹਾ ਕੋ ਜਾਏ ਉਬਰੈ ਰਖਨ ਹਾਰ ਧਿਆਏ ਨਿਰਭਉ ਜਪੈ ਸਗਲ ਭਉ ਮਿਟੈ ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਛੁਟੈ ਜਿਸ ਪ੍ਰਭ ਰਾਖੈ ਤਿਸ ਨਾਹੀ ਦੁਖ ਨਾਮ ਜਪਤ ਮਨ ਹੋਵਤ ਸੁਖ ਚਿੰਤਾ ਜਾਏ ਮਿਟੇ ਅਹੰਕਾਰ ਤਿਸ ਜਨ ਕਾਉ ਕੋਈ ਨਾ ਪਹੁੰਚਣ ਹਾਰ ਸਰ ਉਪਰ ਠਾਡਾ ਗੁਰ ਸੂਰਾ ਨਾਨਕ ਪਾਕੇ ਕਾਰਜ ਪੂਰਾ
मत पूरी अमृत जाकी दृष्ट दर्शन पेखत उधरत श्रेष्ठ चरण कमल जाके अनूप सफल दर्शन सुंदर हर रूप धन सेवा सेवक परवान अंतर जामी पुरख प्रधान जिस मन बसा सोहत निहाल ताकै निकट ना आवत काल अमर पय अमरा पद पाया साध संग नानक हर त्याया सलोक ज्ञान अंजन गुरु दिया अज्ञान अंधेर विनाश हर कृपा ते संत भेटिया नानक मन प्रगास अष्टपति संत संग अंतर प्रभ डीठा नाम प्रभु का लागा मीठा सगल समगरी एक सघट माहे अनक रंग नाना दृष्टा हे नौ निध अमृत प्रभ का नाम देही मैं इसका विश्राम सुन सुमाद अनहत तहनाद कहन न जाई अचरज बिस्माद तिन देखिया जिसे आप दिखाए नानक तिस जन सो जी पाए सो अंतर सो बहर अनंत घट घट व्याप रहया भगवंत तरन माहे आकाश पयाल सर्वलोक पूरण प्रतपाल।

ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम स्नान चार पदार्थ कमल प्रगास सब कै मध सगल ते उदास सुंदर चतुर तत का बेता समदर्शी एक दृष्टिता ए फल तिस जन कै मुख पने गुरु नानक नाम बचन मन सुने एहो निदान जपै मन कोए सब जुग में ताकी गत होए गुण गोबिंद नाम धुन बाणी सिमरत शास्त्र वेद बखाणी सगल मतांत केवल हर नाम गोबिंद भगत कै मन बिश्राम कोट अपराध साध संग मिटै संत कृपा ते जम ते छुटै जाकै मस्तक कर्म प्रभ पाए साध सरण नानक ते आए जिस मन बसै सुनै लाए प्रीत तिस जन आवै हर प्रभ चीत जन्म मरण ताका दुख निवारै दुलभ देह तत्काल उदार है निर्मल शोभा अमृत ताकी बानी एक नाम मन माहे समानी दुख रोग बिनसे पै परम साध नाम निर्मलता के कर्म सब ते ऊच ताकी शोभा बनी नानक एह गुण नाम सुख मनी।

नाम सुखमनि, सुखमनि सुख अमृत प्रभ नाम, भगत जना कै मन बिसराम। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

मैं चेतन आवन नानक्या विचारे सोई सोई सदा सच साहिब साचा साची नाई है पीहोसी जाए न जासी रचना जिन रचाई रंगी रंगी पाती कर कर जिनसी माया जिन उपाई कर कर वेखै कीता अपना जिव तिस दी वड्याई जो तिस भावै सोई करसी हुक्म न करना जाई सो पात साहु साहा पात साहिब नानक रहन रजाय मुंदा संतोख शर्म पत झोली ध्यान की करै विभूत खिंता काल कुवारी काया जुगत डंडा प्रतीत आई पंथी।

किछ पाया सो एका वार, कर कर वेखै सिर जनहार, नानक सच्चे की साची कार। आदेश तिसै आदेश, आद नील अनाद अनाहत, जुग जुग एक वेश, एक दूजी भौ लख होए, लख हुवै लख वीस, लख लख गेड़ा या की है एक नाम जगदीश। ए तेरा हे पत पवड़िया, चढ़ी है हुए कीस, सुन गल्ला आकाश की कीटा या इरीस। नानक नदरी पाई है कूड़ी कूड़ै ठीस, आखन जोर चुपै न जोर, जोर न मंगण दे न जोर, जोर न जीवन मरण न जोर, जोर न राज माल मनसूर, जोर न सुरती ज्ञान विचार, जोर न जुगती छुट्टै संसार। जिस हथ जोर कर वेखै सोए, नानक उत्तम नीच न कोए, राती रुती थिती वार, पवन पानी अग्नि पाताल। तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल, तिस विच जीए जुगत के रंग, तिनके नाम अनेक अनंत, करमी करमी हुए विचार, सच्चा आप सच्चा दरबार। तिथे सोहन पंच परवान, नदरी करम पवै निशान, कच पकाई उथे पाए, नानक गया जापै जाए। धर्म कंड काय हो धर्म, ज्ञान खंड काया खुह कर्म, केते पवन पानी वै संतर, केते काण महेश, केते बरमे काढ़त घड़ी है रूप रंग के वेश। केती आ कर्म भूमि मेर, केते केते धूप देश, केते इंद चंद सूर, केते केते मंडल देश, केते सिद्ध बुद्ध नाथ, केते केते देवी वेश, केते देव दान मुन, केते केते रतन समुंद, केतिया खानी केतिया बाणी, केते पात नरिंद, केतिया सुरती सेव, केते नानक अंत नायंत, ज्ञान खंड मह ज्ञान प्रचंड, तिथे नाद विनोद कोड आनंद। शर्म खंड की बाणी रूप, तिथे घाड़त घड़िए बहुत अनूप, ताकिया गल्ला कथिया ना जाए, जे को कह पिछे पछताए। तिथे घड़िए सुरत मत मन बुद्ध, तिथे घड़िए सुरा सिद्धा की सुध, कर्म खंड की बाणी जोर, तिथे होर न कोई होर, तिथे जोध महाबल सूर, तिन महराम रहा पहरपूर, तिथे सीतो सीता महमा माहे, ताके रूप न कथने जाहे, ना उहे मरे न ठागे जाहे, जिन कै राम वसै मन माहे, तिथे भगत वसै के लो, कर है आनंद सच्चा मन सोए, सच खंड वसै निरंकार, कर कर विखै नदर निहाल, तिथे खंड मंडल वर भंड, जे को कथे तंत नंत, तिथे लो लो आकार, जिव जिव हुकुम तिवै तिवकार, विखै विकसै कर विचार, नानक कथना करड़ा सार, जत पहारा धीरे सुनियार। अहरण मत वेद हथियार, भौख लागन तपताऊ, भांडा भाव अमृत ढाल, घड़ी है शब्द सच्चे।

ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਾਪ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਵਾਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ ਛਪੈ ਛੰਤ ਪ੍ਰਸਾਦ ਚੱਕਰ ਚੇਹਨ ਅਰ ਵਰਣ ਜਾਤ ਅਰ ਪਾਥ ਨਹਿਨ ਜਿਹੇ ਰੂਪ ਰੰਗ ਅਰ ਰੇਖ ਭੇਖ ਕੋ ਕਹਿ ਨ ਸਕਤ ਕੇ ਅਚਲ ਮੂਰਤ ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮ ਤੋਜ ਕਹੀ ਜੈ ਕੋਟ ਇੰਦਰ ਇੰਦਰਾਨ ਸਾਹੇ ਸਾਹਾਨ ਗਨਿਜੈ ਤ੍ਰਿਭਵਨ ਮਹੀਪ ਸੁਰ ਨਰ ਅਸੁਰ ਨੇਤ ਨੇਤ ਬਣ ਤ੍ਰਿਣ ਕਹਿਤ ਤੁਐ ਸਰਬ ਨਾਮ ਕਥੈ ਕਵਨ ਕਰਮ ਨਾਮ ਵਰਨਤ ਸੁਮਤ ਭੁਜੰਗ ਪ੍ਰਿਆ ਚੰਦ ਨਮਸਤਵੰਗ ਕਾਲੇ ਨਮਸਤਵੰਗ ਕਿਰਪਾਲੇ ਨਮਸਤੰਗ ਰੂਪੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਨੂਪੇ ਨਮਸਤੰਗ ਭੇਖੇ ਨਮਸਤੰਗ ਲੇਖੇ ਨਮਸਤੰਗ ਕਾਏ ਨਮਸਤੰਗ ਅਜਾਏ ਨਮਸਤੰਗ ਅਗੰਜੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਪੰਜੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਨਾਮੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਠਾਮੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਕਰਮੰਗ ਨਮਸਤੰਗ ਅਧਰਮੰਗ ਨਮਸਤੰਗ ਅਨਾਮੰਗ ਨਮਸਤੰਗ ਅਕਾਮੰਗ ਨਮਸਤੰਗ ਅਜੀਤੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਪੀਤੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਬਾਹੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਟਾਹੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਨੀਲੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਨਾਦੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਛੇਦੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਗਾਦੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਗੰਜੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਪੰਜੇ ਨਮਸਤੰਗ ਉਦਾਰੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਪਾਰੇ ਨਮਸਤੰਗ ਸੁਏਕੈ ਨਮਸਤੰਗ ਅਨੇਕੈ ਨਮਸਤੰਗ ਅਭੂਤੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਰੂਪੇ ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਕਰਮੇ ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਭਰਮੇ ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਦੇਸ਼ੇ ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਪੇਸ਼ੇ ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਨਾਮੇ ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਕਾਮੇ ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਧਾਤੇ ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਘਾਤੇ ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਧੂਤੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਭੂਤੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਲੋਕੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਸ਼ੋਕੇ ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਤਾਪੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਥਾਪੇ ਨਮਸਤੰਗ ਤ੍ਰਿਮਾਨੇ ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਧਾਨੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਗਾਹੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਬਾਹੇ ਨਮਸਤੰਗ ਤ੍ਰਿਵਰਗੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਸਰਗੇ ਨਮਸਤੰਗ ਪ੍ਰਭੋਗੇ ਨਮਸਤੰਗ ਸੁਜੋਗੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਰੰਗੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਭੰਗੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਗਮੇ ਨਮਸਤਸਰਮੇ ਨਮਸਤੰਗ ਜਲਾਸ਼ਰੇ ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਾਸ਼ਰੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਜਾਤੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਪਾਤੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਮਜਵੇ ਨਮਸਤਸਤਜਵੇ ਅਦੇਸੰਗ ਅਦੇਸੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਭੇਸੇ ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਧਾਮੇ ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਭਾਮੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਕਾਲੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਦਿਆਲੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਰੂਪੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਭੂਪੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਖਾਪੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਥਾਪੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਕਾਲੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਪਾਲੇ ਨਮਸਤਸਤ ਦੇਵੈ ਨਮਸਤੰਗ ਭੇਵੈ ਨਮਸਤੰਗ ਜਨਮੇ ਨਮਸਤੰਗ ਸੁਭਨਮੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਗੌਣੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਭਾਉਣੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਰੰਗੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਭੰਗੇ ਨਮੋ ਕਾਲ ਕਾਲੇ ਨਮਸਤਸਤ ਦਯਾਲੇ ਨਮਸਤੰਗ ਬਰਣੇ ਨਮਸਤੰਗ ਮਰਣੇ ਨਮਸਤੰਗ ਜਰਾਰੰਗ ਨਮਸਤੰਗ ਕਿਰਤਾਰੰਗ ਨਮੋ ਸਰਬ ਧੰਦੇ ਨਮੋ ਸਤ ਬੰਦੇ ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਸਾਕੇ ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਵਾਕੇ ਨਮਸਤੰਗ ਰਹੀਮੇ ਨਮਸਤੰਗ ਕਰੀਮੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਨੰਤੇ ਨਮਸਤੰਗ ਮਹੰਤੇ ਨਮਸਤਸਤ ਰਾਗੇ ਨਮਸਤੰਗ ਸੁਹਾਗੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਸੋਖੰ ਨਮੋ ਸਰਬ ਪੋਕੰ ਨਮੋ ਸਰਬ ਕਰਤਾ ਨਮੋ ਸਰਬ ਹਰਤਾ ਨਮੋ ਜੋਗ ਜੋਗੇ ਨਮੋ ਭੋਗ ਭੋਗੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਦਿਆਲੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਪਾਲੇ ਚਾਚਰੀ ਚੰਤਵ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਰੂਪ ਹੈ ਅਨੂਪ ਹੈ ਅਜੂ ਹੈ ਅਭੂ ਹੈ ਅਲੇਖ ਹੈ ਅਭੇਖ ਹੈ ਅਨਾਮ ਹੈ ਅਕਾਮ ਹੈ ਅਦੇਹ ਹੈ ਅਭੇ ਹੈ ਅਜੀਤ ਹੈ ਅਭੀਤ ਹੈ ਤ੍ਰਿਮਾਨ ਹੈ ਨਿਦਾਨ ਹੈ ਤ੍ਰਿਵਰਗ ਹੈ ਅਸਰਗ ਹੈ ਅਨੀਲ ਹੈ ਅਨਾਦ ਹੈ ਅਜੇ ਹੈ ਅਜਾਦ ਹੈ ਅਜਨਮ ਹੈ ਅਵਰਣ ਹੈ ਅਭੂਤ ਹੈ ਅਪਰਣ ਹੈ ਅਗੰਜ ਹੈ ਅਭੰਜ ਹੈ ਅਚੂਜ ਹੈ ਅਝੰਜ ਹੈ ਅਮੀਕ ਹੈ ਰਫੀਕ ਹੈ ਅਤੰਦ ਹੈ ਅਬੰਧ ਹੈ ਨਿਰਬੂਜ ਹੈ ਅਸੂਜ ਹੈ ਅਕਾਲ ਹੈ ਅਜਾਲ ਹੈ ਅਲਾਹ ਹੈ ਅਜਾ ਹੈ ਅਨੰਤ ਹੈ ਮਹੰਤ ਹੈ ਅਲੀਕ ਹੈ ਨਿਰਸੀਕ ਹੈ ਨਿਰਲੰਭ ਹੈ ਅਸੰਭ ਹੈ ਅਗੰਮ ਹੈ ਅਜਮ ਹੈ ਅਭੂਤ ਹੈ ਅਛੂਤ ਹੈ ਅਲੋਕ ਹੈ ਅਸੋਕ ਹੈ ਅਕਰਮ ਹੈ ਅਭਰਮ ਹੈ ਅਜੀਤ ਹੈ ਅਭੀਤ ਹੈ ਅਬਾਹ ਹੈ ਅਗਾਹ ਹੈ ਅਮਾਨ ਹੈ ਨਿਦਾਨ ਹੈ ਅਨੇਕ ਹੈ ਫਿਰ ਏਕ ਹੈ ਭੁਜੰਗ ਪ੍ਰਿਆ ਛੰਦ ਨਮੋ ਸਰਵ ਮਾਨੇ ਸਮਸਤੀ ਨਿਧਾਨੇ ਨਮੋ ਦੇਵ ਦੇਵੇ ਅਭੇਖੀ ਅਭੇਵੇ ਨਮੋ ਕਾਲ ਕਾਲੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਪਾਲੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਗੌਣੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਭਾਉਣੇ ਅਨੰਗੀ ਅਨਾਥੇ ਨਿਰਸੰਗੀ ਪ੍ਰਮਾਥੇ ਨਮੋ ਭਾਨ ਭਾਨੇ ਨਮੋ ਮਾਨ ਮਾਨੇ ਨਮੋ ਚੰਦਰ ਚੰਦਰੇ ਨਮੋ ਭਾਨ ਭਾਨੇ ਨਮੋ ਗੀਤ ਗੀਤੇ ਨਮੋ ਤਾਨ ਤਾਨੇ ਨਮੋ ਨਿਰਤ ਨਿਰਤੇ ਨਮੋ ਨਾਦ ਨਾਦੇ
नमो पान पाने नमो बाद बादे अनंगी अनामे समस्ती स्वरूपे परभंगी परमाते समस्ती विभूते कलंकंग विनाने कलंकी स्वरूपे नमो राज राजेश्वरं परम रूपे नमो जोग जोगेश्वरं परम सिद्धे नमो राज राजेश्वरं परम वृद्धे नमो शस्त्रपाणे नमो वस्त्रमाणे नमो परम ज्ञाता नमो लोकमाता अपेक्षी अपरमी अपोकी अपुगते नमो जोग जोगेश्वरं परम जुगते नमो नित नारायणे क्रूर कर्मे नमो प्रेत प्रे देवे सुधर्मे नमो रोग हर्ता नमो राग रूपे नमो साह साहं नमो पूप पूपे नमो दान दाने नमो मान माने नमो रोग रोगे नमस्तंग स्नानं नमो मंत्र मंत्रं नमो जंत्र जंत्रं नमो इष्ट इष्टे नमो तंत्र तंत्रं सदा सचिदानंद सर्वं परनासी अनुपे अरूपे समस्तुल निवासी सदा सिद्धदा बुद्धदा वृद्धकर्ता अदो उर्द अर्दं अगंग उग हर्ता परम परम परमेश्वरं प्रोचपालं सदा सर्वदा सिद्धदाता दयालंग छेदी अपेदी अनामंग अकामंग समस्तोपराजी समस्तस्ततामंग तेरा जोर चाचरी छंद जले हैं तले हैं अपीत हैं अपेय हैं प्रभु हैं अजू हैं अदेश हैं अपेश हैं भुजंग प्रचंद अगाध्य अबाध्य अनंदी स्वरूपे नमो सर्व माने समस्ति निदाने नमस्तुंग निर्णाते नमस्तुंग परमाते नमस्तुंग गंजे नमस्तुंग पंजे नमस्तुंग काले नमस्तुंग पाले नमो सर्वदेशे नमो सर्वपेशे नमो राज राजे नमो साज साजे नमो साह साहे नमो महा माहे नमो गीत गीते नमो प्रीत प्रीते नमो रोख रोखे नमो सुख सुखे नमो सर्व रोगे नमो सर्व भोगे नमो सर्व जीतं नमो सर्व पीतं नमो सर्व ज्ञानं नमो परमतानं नमो सर्व मंत्रं नमो सर्व जंत्रं नमो सर्व दृश्यं नमो सर्व कृष्यं नमो सर्व रंगे त्रिपंगी अनंगे नमो जीव जीवं नमो बीज बीजे अखिजे अपिजे समस्तं प्रसिजे कृपालं स्वरूपे कुकर्मं परनासी सदा सर्वदा ऋद सिद्धं निवासी चरपट चंत्व प्रसाद अमृत कर्मे अमृत तर्मे अकल जोगे अचल भोगे अचल राजे अटल साजे अखल धर्मंग अलख कर्मंग सर्वंग दाता सर्वंग ज्ञाता सर्वंग पाने सर्वंग माने सर्वंग प्राणं सर्वंग त्राणं सर्वंग भुगता सर्वंग जुगता सर्वंग देवं सर्वंग पेवं सर्वंग काले सर्वंग पाले रुआल चंत्व प्रसाद आद रूपन आद मूर्त जौन पुरख अपार सर्व मान त्रिमान देव पेवाद उदार सर्व पालक सर्व कालक सर्व कोपन काल जत्र तत्र विराज ही अवतूत रूप रिसाद नाम ठाम न जात जाकर रूप रंग न रेक आद पुरख उदार मूर्त जौन आद शेक देश और न पेश जाकर रूप रेख न राग जत्र तत्र दिशा विशा हुए फैल अनुराग नाम काम बहीन पेक ताम हु नह जाहे सर्व मान सर्वत्र मान सदैव मान तताहे एक मूर्त अनेक दर्शन कीन रूप अनेक खेल खेल अखेल खेलन अंत को फिर एक देव पेव न जा नहीं जे बेद और कतेव रूप रंग न जात पास हो जानी के जे तात मात न जात जाकर जन्म मरण बहीन चक्र बकर फिरे चत्र चक माने पुरतीन लोक चौदह के बिकै जग जापी जे जाप आद देवन आद मूर्त थाप्यो सब जे थाप परम रूप नीत मूरत पूर्ण पुरख अपार सर्व विश्व रचयो सोयम भव गण भंजन हार कालहीन कला संयुक्त अकाल पुरख देश धर्म धाम सो परम रहत अभूत लख अपेश अंग राग न रंग जाकह जात पात न नाम गर्भ गंजन दुष्ट भंजन मुख दाय काम आप रूप अमीक अनुष्ठत एक पुरख अवतूत गर्भ गंजन सर्व भंजन आद रूप असूत अंग हीन भंग अनात्म एक पुरख अपार सर्व लायक सर्व कायक सर्व को प्रतपार सर्व गंता सर्व हंता सर्व ते अनपेख सर्व शास्त्र ना जा नहीं जे रूप रंग रेख परम वेद पुराण जा कह नेत भक्त नित कोट सिमरत प्राण शास्त्र नया वही वह चित मद पार छंत्व प्रसाद गुणगन उदार महिमा अपार आसन अपांग उपमा अनंग अनुभव प्रकाश निस्तिन अनास आजान बाहु साहन साहु राजान राज पानान पान देवान देव उपमा महान इंद्रान इंद्र बालान बाल रंकान रंक कालान काल
अनुभूतांग आभा अपांग गतमित अपार गुणगन उदार मुनगन प्रणाम निपैनिकाम अद्भुत प्रचंड मितगत अखंड आलिश्य कर्म आदृश्य तरम सर्वापरनाढ्यंड भाट्य चाचरी चंत्व प्रसाद गोविंदे मुकंदे उदारे अपारे हरियंग करियंग निर्णामेय कामे भुजंग प्रयाचंद चतर चक्र कर्ता चतर चक्र हर्ता चतर चक्र दानी चतर चक्र जानी चतर चक्र वर्ती चतर चक्र परती चतर चक्र पाले चतर चक्र काले चतर चक्र पासे चतर चक्र वासे चतर चक्र मान्य चतर चक्र दान्य चाचरी छंद न सत्र न मित्र न परमंग न पित्र न कर्मंग न काय अजन्मंग अजाये न चित्र न मित्र परे है पवित्र प्रतिशय अधिशय अदृश्य कृशय भगवती छंत्व प्रसाद कथते के आ चिज देश के आ भिज पिस के आ गंज कर्म के आ भंज भरम के आ भिज लोक के आदित्य सुख के अवतूत बरण के विभूत करण के राजंग प्रभा है के धर्मंग तुझा है के अशोक वर्ण के सर्वा वर्ण है के जगतंग कृति है के छत्रंग छत्री है के ब्रह्मंग स्वरूप है के अनुभव अनुप है के आदि अधिव है के आप अपे वह के चित्रंग बहीन है के कह अधीन है के रोजी रिजा कह रही मै रेहा कह के पाक बे वह के गैफुल गैब है के अफुल गुनाह है के साहन साह के कारण कुनिंद है के रोजी देहांद है के राजक रहीम है के कर्मं करीम है के सर्वं कली है के सर्वं दली है के सर्वत्र मान्य है के सर्वत्र दान्य है के सर्वत्र गौण है के सर्वत्र पौण है के सर्वत्र देश है के सर्वत्र भेष है के सर्वत्र राज है के सर्वत्र साज है के सर्वत्र दीन है के सर्वत्र लीन है के सर्वत्र जाहु के सर्वत्र पाहु के सर्वत्र देश है के सर्वत्र भेष है के सर्वत्र काल है के सर्वत्र पाल है के सर्वत्र हंता के सर्वत्र गंता के सर्वत्र पेकी के सर्वत्र पेकी के सर्वत्र काज है के सर्वत्र राज है के सर्वत्र सुख है के सर्वत्र भूख है के सर्वत्र त्राण है के सर्वत्र प्राण है के सर्वत्र देश है के सर्वत्र भेष है के सर्वत्र मान्य है सदैव प्रधान्य है के सर्वत्र जाप्य है के सर्वत्र ताप्य है के सर्वत्र पान्य है के सर्वत्र मान्य है के सर्वत्र इंद्र है के सर्वत्र चंद्र है के सर्वं कलि मैं के परमं फहिं मैं के अकल अला मैं के साहिब कला मैं के हुस्नल वजू है तो मामुल रजू है हमेशल सलाम मैं सलीखत मुदा मैं गनिमुल शिकस्त है गरीबुल परस्त है बिलंदुल मकान है जमीनुल जमान है तमीजुल तमाम मैं रजुअल निदान है हरीफुल अजीम मैं रजा की यकीन है अनेकुल तरंग है अभेद है अपांग है अजीजुल निवाज है गनीमुल खिराज है निरुक्त स्वरूप है त्रिमुक्त विभूत है प्रभुक्त प्रभा है सुयुक्त सुधा है सुदैव स्वरूप है अपेदी अनूप है समस्तोपराज है सदा सर्वसाज है समस्तुल सलाम है सदैव काम है निर्बाध स्वरूप है अगाध है अनूप है ओंगाद रूप है अनाद स्वरूप है अनंगी अनामी त्रिपंगी त्रिकामी त्रिवर्गंग त्रिबाधे अगंजे अगाधे सुभंग सर्वभागे सुसर्वानुरागे त्रिपुगत स्वरूप है अचिज है अछूत है के नरकंग प्रणास है पृथ्वल प्रवास है निरुक्त प्रभा है सदैव सदा है विपुक्त स्वरूप है प्रयुक्त अनूप है निरुक्त सदा है विपुक्त प्रभा है अनुक्त स्वरूप है प्रयुक्त अनूप है चाचरी छंद अपंग है अनंग है अपेख है अलेख है अपरम है अकर्म है अनाद है जुगाद है अजय है अभय है अभूत है अतूत है अनाश है उदास है अतंध है अबंध है अपगत है विरक्त है अनाश है प्रकाश है निचिंत है सुनित है अलिख है अधिक है अलेख है अपेख है अटा है अगा है असंभ है अगम है अनिल है अनाद है अनित है सुनित है अजात है अजाद है चरपट छंत्व प्रसाद सर्वंग हंता सर्वंग अंता सर्वंग ख्याता सर्वंग ज्ञाता सर्वंग हर्ता सर्वंग कर्ता सर्वंग प्राणं सर्वंग त्राणं सर्वंग कर्मं सर्वंग धर्मं सर्वंग युक्ता सर्वंग मुक्ता रसावल छंत्व प्रसाद नमो नरक नासे सदैवंग प्रकाशे अनंगं स्वरूपे अपंगं विपुते परमात्म प्रमाते सदा सर्वसाथे अगाध स्वरूपे निर्बाध विपुते अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकामे निर्भंगी स्वरूपे सर्वंगी अनूपे न पुत्र न पुत्र न सत्र न मित्र न तात न मात न जात न पात न साकं शरीक है मितु अमीक है सदैवं प्रभा है अजय है अजा है भगवती छंत्व प्रसाद
कि जाहिर जहूर है कि हाजिर हजूर है, हम इसल सलाम है, समस्तुल कलाम है, कि साहिब दिमाग है, कि हुसनल चिराग है, कि कामल करीम है, कि राजक रहीम है, कि रोजी दिहंद है, कि राजक रहिंद है, करीमुल कमाल है, कि हुसनल जमाल है, गनीमुल खिराज है, गरीबुल निवाज है, आरिफुल सिकन है, हिरासुल फिकन है, कलंकं परनास है, समस्तुल निवास है, अगंजुल गनीम है, रजायक रहीम है, समस्तुल जुबा है, कि साहिब किरा है, कि नरकं परनास है, बहसुल निवास है, कि सरबुल गवन है, हमेशुल रवन है, तमामुल तमीज है, समस्तुल अजीज है, परंग परमीस है, समस्तुल अदीस है, आदिशुल अलीख है, हमेशुल अपेख है, नवीनुल जमा है, अमीकुल इमा है, करीमुल कमाल है, कि जरूरत जमाल है, कि अचलंग प्रकाश है, कि मितो सुभाष है, कि अजब स्वरूप है, कि मितो विभूत है, कि मितो पसा है, कि आत्म प्रभा है, कि अचलंग अनंग है, कि मितो अपंग है, मत पार चंत्व प्रसाद मुन मन प्रणाम गुन गन मुदाम अरबर अगंज हर नर पर पांजु अनगन प्रणाम मुन मन सलाम हर नर अखंड बर नर अमंड अनुभव अनास मुन मन प्रकाश गुनगन प्रणाम जलतन मुदाम अंचिज अंग आसन अपंग उपमा पार गत मित उदार जलतल अमंड दिस विश अपंड जलतल महंत दिस विश बेअंत अनुभव अनास त्रितर तुरास आजान बाहु एक सुदाहु ओ अंकाराद कथनी अनाद खलखंड खयाल गुरबर अकाल कर कर प्रणाम चित चरण नामु अनछिज गात आज जना बात अनछंज गात अनरंज बात अनटुट भंडार अनडट अपार आडीठ धर्मु अत ठीठ कर्मु अणवरण अनंत दाता महंत हर बोल मना छंत्व प्रसाद करुणालय है अरकालय है कलखंडन है मैं मंडन है जगतेश्वर है परमेश्वर है कल कारण है सर्व वारण है त्रित के तरण है जग के कर्ण है मन मान्य है जग जान्य है सर्वंग पर है सर्वंग कर है सर्वपास्य है सर्वनाश्य है करुणा कर है विश्वम पर है सर्वेश्वर है जगतेश्वर है ब्रह्मंडस है कलखंडस है परते पर है करुणा कर है अजपा जप है तपा थप है कृता कृत है अमृता मृत है अमृता मृत है करुणा कृत है कृता कृत है तरणी त्रित है अमितेश्वर है परमेश्वर है अकृता कृत है अमृता मृत है अजबा कृत है अमृता मृत है नर नायक है कलकायक है विश्वम्पर है कुरुणालय है नृपनायक है सर्पायक है पावभंजन है अरगंजन है रिपतापन है जप जापन है अकलंकृत है सर्वाकृत है कर्ता कर है हरता हर है परमात्म है सर्वात्म है आत्म बस है जस के जस है भुजंग प्रया छंद नमो सूर्य सूर्जे नमो चंद्र चंद्रे नमो राज राजे नमो इंद्र इंद्रे नमो अंधकारे नमो तेज तेजे नमो बृंद बृंदे नमो बीज बीजे नमो राज संताम संसांत रूपे नमो परम तत्तंग तत्तंग स्वरूपे नमो जोग जोगे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो मंत्र मंत्रे नमो ध्यान ध्याने नमो युद्ध युद्धे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो भोज भोजे नमो पान पाने नमो कलहकर्ता नमो शांत रूपे नमो इंद्र इंद्रे अनादंग विभूते कलंकार रूपे अलंकार अलंके नमो आसे आसे नमो बांक बंके अपंगी स्वरूपे अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकाले अनंगी अकामे एक अचरी चंद अजय अलय अपय अभय अपू अजु अनास अकाश अगंज अपंज अलख अपक अकाल दयाल लेख अपेख अनाम काम अगाह अटाह अनाथि प्रमाथि अजुनी अमुनि न रागे न रंगे न रूपे न रेखे अकर्मंग परमंग गंजे अलिखे भुजंग प्रया छंद नमस्तुल परनामे समस्तुल परनासे अगंजुल अनामे समस्तुल निवासे निरकामंग बेपूते सुमस्तुल स्वरूपे कुकर्मंग प्रणासी सुधर्मंग बेपूते सदा सचदानंद सत्रंग प्रणासी करिमुल कुनिंदा सुमस्तुल निवासी अजाय बेपूते अजायब गनिमे हरियंग करियंग करिमुल रहिमे चत्र चक्रवर्ती चत्र चक्र पुगते स्वयं पव सुभंग सर्वदा सर्वजुगते दुकालंग परनासी दयालंग स्वरूपे सदा अंग संगे अपंगंग बेपूते दुकालंग परनासी दयालंग स्वरूपे सदा अंग संगे अपंगंग बेपूते।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ ਤਵ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੁਵਈਏ ਸ਼ਰਾਵਕ ਸ਼ੁੱਧ ਸਮੂਹ ਸਿਧਾਨ ਕੇ ਦੇਖ ਫਿਰਿਓ ਘਰ ਜੋਗ ਜਤੀ ਕੇ ਸੂਰ ਸੁਰਾਰਦਨ ਸ਼ੁੱਧ ਸੁਧਾ ਦਿਖ ਸੰਤ ਸਮੂਹ ਅਨੇਕ ਮਤੀ ਕੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਕੋ ਦੇਖ ਰਹੋ ਮਤ ਕੋ ਨ ਦੇਖਿਤ ਪ੍ਰਾਣ ਪਤੀ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਾਨ ਕੀ ਭਾਈ ਕਿਰਪਾ ਹੂੰ ਤੇ ਏਕ ਰਤੀ ਬਿਨ ਏਕ ਰਤੀ ਕੇ ਮਾਤਿਮ ਤੰਗ ਜਰੇ ਜਰ ਸੰਗ ਅਨੂਪ ਤੰਗ ਸੁਰੰਗ ਸੁਵਾਰੇ ਕੋਟ ਤੁਰੰਗ ਕੁਰੰਗ ਸਿਕੂਦਤ ਪੌਨ ਕੇ ਗੌਨ ਕੁਜਾਤ ਨਿਵਾਰੇ ਭਾਰੀ ਭੁਜਾਨ ਕੇ ਭੂਪ ਭਲੀ ਬਿਦ ਨਿਆਵਤ ਸੀਸ ਨ ਜਾਤ ਵਿਚਾਰੇ ਤੇ ਭਏ ਤੂੰ ਕਹਾਂ ਭੈ ਭੂਪਤ ਅੰਤ ਕੋ ਨਾਂਗੇ ਹੀ ਪਾਏ ਪਧਾਰੇ ਜੀਤ ਫਿਰੈ ਸਭ ਦੇਸ਼ ਦਿਸ਼ਾਨ ਕੋ ਬਾਜਤ ਢੋਲ ਮਿਰਦੰਗ ਨਿਗਾਰੇ ਗੁੰਜਤ ਗੂੜ ਗਜਾਨ ਕੇ ਸੁੰਦਰ ਹਿੰਸਤ ਹੀ ਹੈ ਰਾਜ ਹਜ਼ਾਰੇ ਭੂਤ ਭਵਿੱਖ ਭਵਾਨ ਕੇ ਭੂਪਤ ਕੌਣ ਗਣੈ ਨਹੀਂ ਜਾਤ ਵਿਚਾਰੇ ਸ੍ਰੀ ਪਾ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਾਨ ਭਜੇ ਬਿਨਾ ਅੰਤ ਕੁਵੰਤ ਕੇ ਧਾਮ ਸਿਧਾਰੇ ਤੀਰਥ ਨਾਨ ਦਇਆ ਦਮ ਦਾਨ ਸੁਸੰਜਮ ਨੇਮ ਅਨੇਕ ਵਸੇਖੈ ਵੇਦ ਪੁਰਾਨ ਕਤੇਵ ਕੁਰਾਨ ਜਮੀਨ ਜਮਾਨ ਸੁਬਾਨ ਕੇ ਪੇਖੈ ਪੌਨ ਆਹਾਰ ਜਤੀ ਜਤ ਧਾਰ ਸਭੈ ਸੁਵਿਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਕ ਦੇਖੈ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਾਨ ਭਜੇ ਬਿਨ ਭੂਪਤ ਏਕ ਰਤੀ ਬਿਨ ਏਕ ਨ ਲਿਖੈ ਸ਼ੁੱਧ ਸਿਪਾਹ ਦੁਰੰਤ ਦੁਬਾਹ ਸੋ ਸਾਜ ਸੁਨਾ ਦੁਰਜਾਨ ਦਲੈਂਗੇ ਭਾਰੀ ਗੁਮਾਨ ਭਰੇ ਮਨ ਮੈਂ ਕਰ ਪਰਬਤ ਪੰਖ ਹਲੇ ਨ ਹਲੈਂਗੇ ਤੋਰ ਅਰੀਨ ਮਰੋਰ ਮਵਾਸਨ ਮਾਤਿਮ ਤੰਗਨ ਮਾਨ ਮਲੈਂਗੇ ਸ੍ਰੀ ਪਾ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਾਨ ਕਿਰਪਾ ਬਿਨ ਤਿਆਗ ਜਹਾਨ ਨਿਦਾਨ ਚਲੈਂਗੇ ਵੀਰ ਪਾਰ ਵਡੇ ਬਰਿਆਰ ਵਿਚਾਰੈ ਸਾਰ ਕੀ ਧਾਰ ਪਛਈਆ ਤੋਰਤ ਦੇਸ਼ ਮਲਿੰਦ ਮੁਵਾਸਨ ਮਾਤਿਕ ਜਾਨ ਕੇ ਮਾਨ ਮਲਈਆ ਗਾੜੇ ਗੜਾਨ ਕੇ ਤੋੜਨ ਹਾਰ ਸੁਬਤ ਨਹੀਂ ਚਕਚਾਰ ਲਵਈਆ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਸਭ ਕੋ ਸਿਰ ਨਾਇਕ ਜਾਚਕ ਨੇਕ ਸੁਏਕ ਦਿਵਈਆ ਦਾਨਵ ਦੇਵ ਫਨਿੰਦ ਨਿਸਾਚਰ ਭੂਤ ਭਵਿੱਖ ਭਵਾਨ ਜਪੈਂਗੇ ਜੀਵ ਜਿਤੇ ਜਲ ਮੈਂ ਥਲ ਮੈਂ ਪਲ ਹੀ ਪਲ ਮੈਂ ਸਭ ਤਾਪ ਥਪੈਂਗੇ ਪੁਨ ਪ੍ਰਤਾਪਨ ਬਾੜ ਜੈ ਧੁਨ ਪਾਪਨ ਕੇ ਬੋ ਪੁੰਜ ਖਪੈਂਗੇ ਸਾਧ ਸਮੂਹ ਪਰ ਸਨ ਫਿਰੈ ਜਗ ਸਤਰ ਸਭੈ ਅਵਲੋਕ ਚਪੈਂਗੇ ਮਾਨਵ ਇੰਦਰ ਜਿੰਦਰ ਨਿਰਾਦ ਬਜੌਨ ਤ੍ਰਿਲੋਕੋ ਰਾਜ ਕਰੇਂਗੇ ਕੋਟ ਇਸ਼ਨਾਨ ਗਜਾ ਦਿਕ ਦਾਨ ਅਨੇਕ ਸੁਅੰਬਰ ਸਾਜ ਬਰੈਂਗੇ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹੇਸ਼ਰ ਵਿਸ਼ਨ ਸਚੀ ਪਤ ਅੰਤ ਫਸੇ ਜਮਫਾਸ ਬਰੈਂਗੇ ਜੇ ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਪਤ ਕੇ ਪ੍ਰਸ ਹੈ ਪਗ ਤੇ ਨਰ ਫੇਰ ਨਾ ਦੇਹ ਤਰੈਂਗੇ ਕਹਾ ਭਇਓ ਜੋ ਦੋ ਲੋਚਨ ਮੂੰਦ ਕੈ ਬੈਠ ਰਹੇ ਹੋ ਬਗ ਧਿਆਨ ਲਗਾਇਓ ਨਾਥ ਫਿਰਿਓ ਲੀਏ ਸਾਧ ਸਮੁੰਦਰਨ ਲੋਕ ਗਯੋ ਪਰ ਲੋਕ ਗਵਾਯੋ ਬਾਸ ਕੀ ਉਪਖਿਆਨ ਸੁ ਬੈਠ ਕੇ ਐਸੇ ਹੀ ਐਸੇ ਸੁਬਹਿ ਸਵਿਤਾਯੋ ਸਾਚ ਕਹੂ ਸੁਨ ਲਿਹੋ ਸਬੈ ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਯੋ ਕਾਹੂ ਲੈ ਪਾਹਨ ਪੂਜ ਧਰਿਓ ਸਿਰ ਕਾਹੂ ਲੈ ਲਿੰਗ ਗਰੇ ਲਟਕਾਯੋ ਕਾਹੂ ਲਖਿਓ ਹਰ ਅਵਾਚੀ ਦਿਸ਼ਾ ਮਹਿ ਕਾਹੂ ਪਛਾ ਕੋ ਸੀਸ ਨਿਵਾਯੋ ਕੋ ਬਤਾਨ ਕੋ ਪੂਜਤ ਹੈ ਪਸ ਕੋ ਮਿਰਤਾਨ ਕੋ ਪੂਜਨ ਧਾਯੋ ਕੂਰ ਕਿਰਿਆ ਉਰਜੋ ਸਭ ਹੀ ਜਗ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਾਨ ਕੋ ਭੇਦ ਨ ਪਾਯੋ ਕੋ ਬਤਾਨ ਕੋ ਪੂਜਿਤ ਹੈ ਪਸ ਕੋ ਮਿਰਤਾਨ ਕੋ ਪੂਜਨ ਧਾਯੋ ਕੂਰ ਕਿਰਿਆ ਉਰਜੋ ਸਭ ਹੀ ਜਗ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਾਨ ਕੋ ਭੇਦ ਨ ਪਾਯੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ ਕਬਿਓ ਬਾਚ ਬੇਨਤੀ ਚੌਪਈ ਹਮਰੀ ਕਰੋ ਹਾਥੈ ਰੱਚਾ ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਚਿਤ ਕੀ ਇੱਛਾ ਤਬ ਚਰਨਨ ਮਨ ਰਹਿ ਹਮਾਰਾ ਆਪਣਾ ਜਾਨ ਕਰੋ ਪ੍ਰਤਪਾਰ ਹਮਰੇ ਦੁਸ਼ਟ ਸਭੈ ਤੁਮ ਕਾਬਹੁ ਆਪ ਹਾਥੈ ਮੋਹਿ ਬਚਾਵਹੁ ਸੁਖੀ ਬਸੈ ਮੋਰੋ ਪਰਿਵਾਰ ਸੇਵਕ ਸਿੱਖ ਸਭੈ ਕਰਤਾਰਾ ਹੋਰ ਅੱਛਾ ਨਿਜ ਕਰਦੈ ਕਰੀਐ ਸਭੈ ਰਣ ਕੁਆ ਸੰਗਰੀਐ ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਹਮਾਰੀ ਆਸਾ ਤੋਰ ਭਜਨ ਕੀ ਰਹਿ ਪਿਆਸਾ ਤੁਮੈ ਚਾੜ ਕੋਈ ਅਵਰ ਨਾ ਧਿਆਉਂ ਜੋ ਪਰਚਾਉ ਸੋ ਤੁਮ ਤੇ ਪਾਉ ਸੇਵਕ ਸਿੱਖ ਹਮਾਰੇ ਤਾਰੀਐ ਚੁਣ ਚੁਣ ਸਤਰ ਹਮਾਰੇ ਮਾਰੀਐ ਆਪ ਹਾਥੈ ਮੁਜੈ ਵਰੀਐ ਮਰਨ ਕਾਲ ਕਾ ਤ੍ਰਾਸ ਨਿਵਰੀਐ ਹੂ ਜੋ ਸਦਾ ਹਮਾਰੇ ਪੱਛਾ ਸ੍ਰੀ ਅਸ ਤੁਜੂ ਕਰੇ ਹੋ ਰੱਛਾ ਰਾਖ ਲਿਓ ਮੋਹਿ ਰੱਖ ਨਹਾਰੇ ਸਾਹਿਬ ਸੰਤ ਸਹਾਇ ਪਿਆਰੇ
दीन बंदुष्टन के हंता तुम हो पुरी चतुर्दशकंता काल पाए ब्रह्मा भक्तरा काल पाए शिवजू अवतरा काल पाए कर विष्णु प्रकाशा सकल काल का किया तमाशा जमन काल जुगी शिव की यु वेद राज ब्रह्मा ज्योति युग जवन काल सब लोक सुवारा नमस्कार है ताहे हमारा जवन काल सब जगत बनायु देव दय जचन पुजायु आदंते कै अवतारा सोई गुरु समझियो हमारा नमस्कार तिसी को हमारी सकल प्रजा जनि आप सुवारी शिव कन को सब गुण सुख दियो सत्रह को पल मोह बद कियो कट कट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछान चीटी ते कुंचर स्थूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पछाने घट घट के पट पट की जाने जब उदकर्क करा करतारा प्रजा तर तब देह अपारा जब आकर्क कर तो हो कब हूँ तुम मैं मिलत देह तर सब हूँ जेते बदन सृष सब तार है आप अपनी बूझ उचार है तुम सब ही ते रहत निरालम जानत बेद भेद अर आलम निरंकार निर्भकार निर्लंब वाद नील अनाद असंभ ताका मूड उचारत भेदा जाको भेव न पावत भेदा ताको कृपा न अनुमान तो महामूड कछ भेद न जान तो महादेव को कहत सदा शिव निरंकार का चिन्हत न भेव आप अपनी बुद्ध है जेती वर्णत भिन्न भिन्न तुह तेती तुमरा लखा न जाए पसारा के बिर सजा प्रथम संसारा एक कै रूप अनूप स्वरूपा रंक भय राव कही पूपा अंडज जेर से तज कीनी उत्पुज खान बहुर रच दीनी कहूं फूल राजा हुए बैठा कहूं सिमट भय शंकर कैठा शिगरी श्रेष्ठ दिखाए चंबव आजुगा स्वरूप स्वयं पव अब रक्षा मेरी तुम करो सिख उबार सिख संगरो दुष्ट जिते उठवत उत्पाता सकल मलेश करो रन काता जी आस तुझ दब सरनी परे तिनके दुष्ट दुख थावे मरे पुरख जवन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सब टारे जो कल को एक बार ते है ताकि काल निकट न है रक्षा हुई ताई सब काला दुष्ट अरिष्ट रह तत्काला कृपा दृष्ट अंजाहे निहर हो ताकि ताप तनक मह हरे हो रिद्ध सिद्ध कर हो सब हुई दुष्ट छाछव सके न कोई एक बार जिन तुम्हें संभारा काल वास्ते ताहे उबारा जिन नर नाम तिहारू कहा दार दुष्ट दुख ते रहा खड़ग के तुम्हें शरण तिहारी आप हाथ दे लिहु उबारी सर्व ठाउर मोह सहाई दुष्ट दुख ते लिहु बचाई कृपा करी हम पर जग माता ग्रंथ करा पूर्ण सुबराता किल्विक सकल देह को हरता दुष्ट दुखिन को क्षय करता श्री अस्तो जप भय दयाला पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला मन वांछित फल पावे सोई दुख न तिसे व्यापत कोई अडिल सुने गुंग जो याहि सुरस न पावई सुने मूड चित लाए चतुरता आवई दुख दर्द पौ निकट न तिन नर के रह हो जो या की एक बार चौपाई को कह चौपाई संबत सत्रह सहस पुनी जय अर्ध सहस पुन तीन कही जय पाद्र शुद्धि अष्टमी रवारा तीर तद्रव ग्रंथ सुधारा सुवैया पाए गहे जब ते तुमरे तब ते को आंख तरे नहीं आन्यो राम रहीम पुराण कुरान अनेक कह मत एक न मान्यो सिमृत शास्त्र वेद सब है भव भेद कह हम एक न जान्यो श्री अस्पान कृपा तुमरी कर मैं न कहो सब तुहे बखान्यो दोहरा

कर शांत सुख मन आए वसिया, जिन इच्छा सब पुजाइया सदा कुर्बान कीता गुरु विट्ठो, जिस दिया है वडियाइया कह नानक सुनो संतो सब धरो प्यारो, साचा नाम मेरा आधारू वाजी पंच सब तित कर सुभागे, कर सुभागे शब्द वाजी कला जित कर तारिया, पंच दूत दवास कीते काल कंटक मारिया, तुर कर्म पाया तुर जिन को से नाम हर कह लागे, कह नानक तह सुख हुआ तित कर अनहद वाजी, साची लिवे बिन देहि निमाणी, देहि निमाणी लिवे बाजू क्या करे विचारिया, तुद बाज समरथ कोई नाही कृपा कर बनवारिया, ए सुनो हुर थाउ नाही शब्द लाग सुवारिया, कह नानक लिवै बाजू क्या करे विचारिया, आनंद आनंद सबको कह आनंद गुरु ते जानिया, जानिया आनंद सदा गुरु ते कृपा करे प्यारिया, कर कृपा किलवे कट्टे ज्ञान जन सारिया, अंदरो जिनका मोह टुटा तिनका शब्द सच्चा सुवारिया, कह नानक हो आनंद है आनंद गुरु ते जानिया, बाबा जिस तू देहे सोई जन पावे, पावे ता सो जन दे जिसनु होर क्या करे विचारिया, एक भरम भूले फिरे दादि सिक नाम लाग सुवारिया, गुर प्रसादी मन भया निर्मल जिन्ना भाणा पावे, कह नानक जिस देह प्यारे सोई जन पावे, आव हो संत प्यारे हो अकथ की करह कहानी, करह कहानी अकथ केरी कित द्वारे पाई है, तन मन तन सब सौप गुर कहो हुक्म मन्ने पाइए, हुक्म मन्नेहु गुरु के रागा वो सच्ची बाणी, कह नानक सुनो संतो कथियो कथ कहानी, ए मन चंचला चतुराई किने न पाया, चतुराई न पाया किने तू सुन मन मेरिया, ए माया मोहनी जिने परम भुलाया, माया ता मोहनी तिने कीती जिन ठगोली पाया, कुर्बान कीता तिसे विट्टा हो जिन मोह मीठा लाया, कह नानक मन चंचल चतुराई किने न पाया, हे मन प्यारे आ तू सजा सच संभाले, कुटम तू जी देखदा चलै नाही तेरे नाले, साथ तेरे चलै नाही तिस नाल क्यों चित लाइयै, ऐसा कामू लेना कीचै जितंत पछोताइयै, सतगुरु का उपदेश सुन तू होवै तेरे नाले, कह नानक मन प्यारे तू सदा सच संभाले, अगम गुचरा तिरंत न पाया अंतो न पाया किने तेरा, अपना आप तू जाने जी जन सब खेल तेरा, क्या कुआक बखाने आखै ता विखै सब तू है जिन जग तू पाया, कह नानक तू सदा गम है तिरंत न पाया, सुर नर मुंजन अमृत खोज दे सो अमृत गुर ते पाया, पाया अमृत गुर कृपा कीनी सच्चा मन वसाया, जी जन सब तुदो पाए विवेक प्रश्न आया, लभ लोभ अहंकार चुका सतगुरु भला पाया, कह नानक जिसनु आप तुटा तिन अमृत गुर ते पाया, भगता की चाल निराली चाला निराली भगता हा केरी, बिक मार्ग चलना लभ लोभ अहंकार कर तृष्णा बहुत नाही बोलना, खने हूं तिखी वाल हूं निकी एत मार्ग जाना, गुर प्रसादी जिनी आप तजिया हर वासना समानी, कह नानक चाल भगता जुग हो जुग निराली, ज्यों तू चलाहे तिव चलै स्वामी, होर क्या जाना गुण तेरे, जिव तू चलाहे तिवै चलै जिन्ना मार्ग पावहे, कर कृपा जिन्ना लाहे से हर हर सदा त्यावहे, जिसनु कथा सुनाहे अपनी से गुरुद्वारे सुख पावहे, कह नानक सच्चे साहिब ज्यों पावै तिवै चलावहे, एहो सुहेला शब्द सुहावा शब्द सुहावा सदा सुहेला सतगुरु सुनाया, एहो तिन कै मन वसिया जिन तुरहों लिखिया आया, एक फिर कनेरे करह गल्ला गली किने न पाया, कह नानक शब्द सुहेला सतगुरु सुनाया, पवित होए से जना जिनी हर त्याया, हर त्याया पवित होए गुरमुख जिनी त्याया, पवित माता पिता कुटम सह स्यो पवित संग सुभाइया, कह दे पवित सुन दे पवित से पवित जिनी मन वसाया, कह नानक से पवित जिन गुरमुख हर हर त्याया, गर्मी सहज न उपजै बिन सहजै सहसा न जाए, न जाए सहसा कितै संयम रहि कर्म कमाए, सह सहजु मलीन है कि संयम धोता जाए, मन धूव शब्द लागू हर स्यो रहो चित लाए, कह नानक गुर प्रसादी सहज उपजै ए सहसा इव जाए।

सुई प्रथम भगवती सिमरकै गुरु नानक लई त्याय। फिर अंगद गुरु ते अमरदास रामदास हुई साय। अर्जुन हर गोबिंद नौ सिमरौ श्री हर राय। श्री हर कृष्ण त्याई जिस डिठे सब दुख जाय।

श्री सुखमनी साहिब जी के पाठ नितनेम बाणिया दे पाठ होए अगाध बोध बाणी पढ़ दिया आप जी के दसरिया पासों बेअंत भुला हुई आप जी ने मुआफ कर देनी आगे तो सावधानता बख्श करनी सिर ते मेर परिया हथ रख के बाणी शुद्ध ते स्पष्ट पढ़।

चलायो सब सिखण को हुक्म है गुरु मान्यो गुरु ग्रंथ जी मान्यो प्रगट गुरां के जो प्रभु को मिल बोच है खोज शब्द में राज करेगा खालसा आकी रह ना ख्वार हुए सब मिलेंगे बचे शरण जो

0: सिखी सिख्या गुर विचार नगरी कर्म लगाए पार कोलू चरखा चक्की चक थल वरुले बहुत अनंत लाटू मादानिया अनगाह पंखी पौंदिया लैना सा सूए चढ़ पवई अजंत नानक पौंदिया गणत नान
1: मंदन मन पवाए सोए पै करत नचे सब कोए नच नच हसे चले सिरोए उठ न जाए सदन होए नचन कुदन मन का चाओ नानक जिन मन पाओ तिन मन पाओ पौड़ी नाम तेरा निरंकार है।

सत्संग है जी, बोलो जी। वाहिगुरु वाहिगुरु। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी साहेब आज भगवती पाचे दसवीं प्रथम भगवती समर कहे गुरु नानक लई त्याय फिरंकर कुरते अमरदास रामदास हो सहाय अर्जुन हर गोबिंद सिमरो श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याय सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरिया करण दावता है सब थाई हो सहाय दसवें पातशाह गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज सब थाई हुए सहाय दसा पाची के पुत्रात्मक स्वरूप साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब के पारदार अंतर के खालसा से बोलो जी। वाहेगुरु जी महाराज आप जी के पंज प्यारे चार साहबजादे चाली मुक्त हटियां जपिया तपिया जिन्हें नाम जपया वन छकिया दे चलाई ते वाहि देह के निट कीता जिन्हें प्यार सत्यारे की कमाई का अंतर की बोलो जी। वाहेगुरु जिन्ना सिंह सिंगणिया धर्म ये सी दिते बंद बंद कटवाए खोपरिया लुहाइया चरखिया जड़े आ रहे न चलाए गए गुरुद्वारे सेवा कुर्बानिया की धर्म ने आ रहा किसके सत्संग निभाया तिना की कमाई का ध्यान दरके बोलो जी। वाहेगुरु पक्त गुरुद्वारा का ध्यान दरके बोलो जी। वाहेगुरु प्रथम है सरबत खालसा जी की अरदास है जी सरबत खालसा जी को वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु नाम चेताव है जित आवन का सर का सर सुख हुआ जहां जहां गुरु खालसा साहब तो हर चर आए देव ते की फतेह बिरध की पैज पंथ की जी श्री साहब जी सहाय खालसा जी के बोल बाले बोलो जी। वाहेगुरु सिखां नूं सिखी दान केस दान रहत दान विवेक दान साह दान भरोसा दान दाना सिर दान नाम दान श्री अमृतसर साहब दर्शन इशनान क्योंकि चंदे बूंगे जुग जुग अटल धर्म क्या जयकार बोलो जी। वाहेगुरु सिखां दा मन नीवा मत उची मत पत के रखे आप वाहेगुरु गुरु की बनवाए पंथ सदा सहाय दता जियो गुरुद्वारा ननकाना साहब पंजा साहब होर गुरुद्वारे गुरुधाम जिन्हों तो आपके पंथ छोड़िया गया है उन्होंने खुले दर्शन दिलाज तो सेवा संभाल दादा अपने खालसा जी बख्शो ये नोटिया की ओट गुरु ने आसरिया ने आसरे गुरु धन धन गुरु ग्रंथ उतार दियो दोहे कर जोड़ करो अरदास तुम भावे तो आने रास हे गिर महाराज जी आप जी चरण कामना अरदास नहीं दिता जी आपने बख्शिश की है अमृत वेले प्रकाश पान संगतान दर्शन दर दे के निहाल उतार जी हो बेअंत बाणिया के पाठ हुए अज रागी सिंह ने आपके चरण जासा की वारत की किसी ने विद्वान वीर ने अज का हुक्मनामे की कथा प्यार की कृपा करो मुइया भुला चुका माफी बख्शो पढ़ी हुई बाणी सोच के सचखंड प्रवान करो बाणी का भाव सारिया संगत हिरदय नुकसान की बात करो जी अगो तो शो से मित्र वाणी टाणी बार बुद्धि बख्शिश करो मैं आज इस खुशी आप जी मखिया दातों में पितरकड़ाम शाह जी देगा तैयार करें हाल दतार आप जी भोग लाओ शीत प्रसाद सार संगत की रसना लायक हो जो जी सके स्वास स्वास आप जी का पितर नाम जब बख्शिश करो दतार जी दुख कलेशा रोगों का नाश करो सुखों का प्रकाश करो देश प्रदेश रखा बख्शिश करो जी इमराज आप जी मखियां दातों ने नगर चुट सवार प्रवान करनी दतार अमृत वेले तो लैके दरते आई साफ संगत दर प्रवान करो घड़ियां लिख के लाओ संगत का दर देते फिर बेटा प्रवान शुभकामना पूर्ण करो जी इमराज कृपा करो आपके चरणा सेवा कर रहे सारे टहरिया सिंह सिंगणिया तंदुरुस्ती बख्शो चाडी गला बख्शो और सदा ही इस तरह अपने चरणा सेवा की भावना रखने की बालता करो गरीब नवाज कृपा करो दतार जी हो खालसा मन से कौम एकता सुभाग प्यार की बख्शी करके सत दोई दाल बख्शो चाना ना जोड़ो गुरबाणी का प्यार बख्शो गरीब नवाज हर मैदान दुआन फतेह बख्श करने की बालता करो जी हे गुरु गरीब नवाज दूर तक अंज बैठिया लाइव खतक श्रवण कर रही सारे संगत हाजिर प्रवान करो घड़िया लिख लाओ दतारा आपने बख्शी की संगत तो बख्शे ने संगत आपके जाना धनबाद करते हैं शुक्रिया अदा करते हैं बेहद ऑनलाइन गुरु घर गुरु घर सेवा सिंह दस संगत माए बेटा करनी चाहना प्रवान करो बख्शा दमाइया सबल करो कार्य वो तार सब संगत दुभकामना सरवा पूरी करो जी दतार मेहरा करो कृपा करो सचपात चलियो सेवा प्रवान करो भुला चुका की माफी बख्शो पेदर रुकमनामी बख्श कर परंतु लड़ी वास्ते हर फटकार वास्ते आगा बख्शो शुद्ध से बुद्ध सेवा लाने की बात करो दता रेंदे का सुहार के चना तना दी बनाओ सही प्यारे मेरो जिले बनावता नाम चेता नानक नाम चढ़दी करा तेरे भाने सरवास वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। दोहरा आग्या भाई अकाल के तभी चलायो सब सिखन गो हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ गुरु ग्रंथ जी मान्यो प्रगट गुरा की दे जो प्रभु को मिल बोझ है खोज शब्द महल।

जैसी कलम बड़ी है मस्तक, तैसी जीअड़े पास। कहो नानक प्राणी पहले पहरे, हुकम पया गर्भास। दूजे पहरे रहन कैवण जारिया मित्रा, विसर गया ध्यान। हथो हथ नचाइए वण जारिया मित्रा, ज्यों जसुदा कर कान। हथो हथ नचाइए वण जारिया मित्रा, ज्यों जसुदा

अंत नहीं कछ तेरा। जिन रच रचिया तिसे न जाने, मन भीतर धर ज्ञान। कहु नानक प्राणी दूजे पहरे, विसर गए।

प्राणी बिकल भया संग माया धन स्यों रत्ता जो बनमत्ता अहला जन्म गवाया।

भेत चेत हर किसै न मिलियो, जाजम पकड़ चलाया। झूठा रुदन हुआ दुआलै, खिन मह भया पराया। साई वस्त प्राप्त हुई जिस

जोबन घटै जरुआ जिने वन जा रिया मित्रा आव घटै दिन जाय अंतकाल पछतासी अंधुले जाजम पकड़ चलाया सब किछ अपना कर कर राखिया खिन मह भया पराया बुद्ध विसरजी गई सियाणप कर अवगन पछुताई कहो नानक प्राणी तीजै पहरै प्रभ चित हो लिवलाय चौथे पहरै रैन कैवन जा रिया मित्रा बिरद भया तन खीन अखी अंध।

चौथा पहले पहरे बन रैन कैवन जा रे अमित्रा हर पाया उधर मंजार हर त्याग

हर सेव हो खिन खिन ढिल मूल न करे हो जित अस्थिर जुग जुग हो वो हर सेती सदमान हो रलिया जन्म मरण दुख खूब हो गुर सतगुर स्वामी भेद ना जान हो जित मिल हर भगत सुखांदी कहो नानक प्राणी चौथे पहरे सफल्यो रैन भगतां दी श्री राग महला पंजवां।

क्यों कर हर दर्शन पिखे, हर हर अपनी कृपा करे, गुरमुख साहुरड़े कम सिखे, साहुरड़े कम सिखे, गुरमुख हर हर सदा त्याए, सहिया विच फिरे सुहेली, हर दर्द है बहां लुड़ाए, लेखा धर्म राय की बाकी, जप हर हर नाम किरखे, मुंद एयानी पेयड़े, गुरमुख हर दर्शन दिखे, वियाहु हुआ मेरे बाबूला, गुरमुखे हर पाया, अज्ञान अंधेरा कटिया, गुर ज्ञान प्रचंड बलाया, बलिया गुर ज्ञान अंधेरा बिनसिया, हर रत्न पदा

हर सत सते मेरे बाबूला हर जन मिल जन्य सुहंदी पेवकड़ै हर जप सुहेली विच साहुरड़ै खरी सुहंदी साहुरड़ै विच खरी सुहंदी जिन पेवकड़ै नाम संभालिया सब सफल्यो जन्म तिना दा गुरमुख जिना मन जिन पासा ढालिया हर संत जिना मिल कारज सोहया वर पाया पुरख आनंदी हर सत सत मेरे बाबूला हर जन मिल जन्य सुहंदी।

सो कूड़ अहंकार कछ पाजू। हर प्रभ मेरे बाबूला, हर देव हो दान मैं दाजू। हर राम राम मेरे बाबूला, फिर मिल धन वेल वदंदी। हर जुग है जुगो जुग जुग।

हर नाम जपत परगासो। सिमर स्वामी सुखहागामी इच्छ सगली पुनिया, पुरबे कमाए श्री रंग पाए हर मिले चिरी विचुनिया। अंतर बाहर सरबत रव्या मन उपजिया विश्वासो, नानक सिख दे मन प्रीतम कर संता संग।

हर पी आघाने अमृत बाने सर्व सुखा मन उठे श्री धर पाए मंगल गाए इच पुन्नी सतगुर तुठे लड़ लीने लाए नौ निद पाए नाउ सरबस ठाकुर दीना नानक सिख संत समझाई हर प्रेम भगत मन लीना श्री राग के चंत महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद डखना हठ

अनुग्रहो मन तन अंक सुमावै डखना सोहंदड़ो हब ठाए कोई न दिसै दूजड़ो खुलड़े कपाट नानक सतगुर भेटते छंत तेरे बचन।

गोबिंद मन मोहिया जीउ, संतन कै प्रसाद अगाध, कंठे लग सोहिया जीउ, हर कंठ लग सोहिया दुख सब जोहिया, भगत लखण कर वस पहे, मन सर्ब सुख बुठे गोविंद तुठे, जन्म मरना सब मिट गए।

जिन हर पाया गुरमते जन नानक कमल परगासिया मन हर हर उठड़ा हे मन हर हर जपन करे हर गुर सरनाई भज पाओ जिंदू सब किलविख दुख पर हरे राव घट घट रमैया मन वसै क्यों पाइय कित पत गुरपू

ता कही न जाय। सरह सरियत करह विचार, बिन बूझे कैसे पावह पार। सिदक कर सिजदा मन कर मकसूद, जह तिर देखा तिह धर मौजूद।

के पावन पंक्तियां एक बार सारे रल के गा लीए, फिर समाप्ति है। गुरु अर्जन देव जी महाराज केड़े सुख की गल करते, भावना गुरु अर्जन देव जी की वेखो कैसी है। अकाल पुरख सतगुरु, जे तुसी रहम ना करते, तरस ना करते, दया ना करते, मेरा मत दे साई बख्शिश ना करते, तो मेरे अंदर नहीं सी सुख बना। वो अंदरले सुख की गल करते, दुनियादार कह देंदे ने मेरे कोल इन्ना पैसा है, इन्नी प्रॉपर्टी है, कई ऐसे भी मिलते ने भाई साहब, इन्ना जोड़ चलिया कई पीढ़ियां बैठ के खाऊंगी। ते गुरु साहब जी नूं पुछिए, ये धन दौलत जे तेरे अंदर ही सुख नहीं ना, रूह दा मन दा अंदर शांति नहीं, सबर नहीं, सहनशीलता नहीं, किसी दे बोल कबूल बर्दाश्त करन दी ताकत नहीं, ते सतगुरु कहंदे ने हले सुख बनया किते, हले सुख बनया नहीं। तू ते हर वेले अपने मन नूं काम क्रोध लोभ मोह विच हंडाउंदा है, खरीदा बुरे दा भला कर, गुस्सा मन ना हंडाए, हर वेले क्रोध विच हंडाउंदा है, पुआड़े रिश्तेदारियां तोड़ देंदा है। सतगुरु कहंदे ने गुरु नानक दे घर विच केवल ता केवल जोड़न वाले नूं थां मिलती है, तोड़न वाले नूं नहीं। साच कहो सुन ले हो सवै, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। जिन्हां कोल मन दा सुख है ना, प्रशादा भावें एक टाइम घट मिल जाए, गुरु अर्जन देव जी कहंदे ने फिर उन्हां नालों दुनिया विच कोई अमीर नहीं, वो सब तो अमीर है। सारा कुछ होवे, जिवें असीं मोबाइल नाल कनैक्ट हो जाने हैं ना, पता नहीं लगता किन्नी किन्नी देर। गुरु अर्जन देव जी कह रहे ने मेरे नाल कनैक्ट हो, मेरे नाल गल कर, मेरे नाल सुरती बिरती टिका के एक एक सवास सफला बना। पढ़ो सारे समाप्ति है, एक बारी कह दईए सतगुरु जी तुसी दया कीती है, रहम कीती है, मेरे वर्गे कीड़े मकोड़े कई तुरे फिरते हैं, तुहाडी दया नाल चौंकड़ा मार के समाधि विच लीन जे होए बैठे हैं ना, तुसी बठाया।